0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8
2: FM। अरे आओ आओ संतो आओ आओ आओ आओ बैठो बैठो बैठो बैठो बेटे सीधा हो यहाँ विश्राम कर। देखो ये मेरी छोटी सी कुटिया है और मेरे भगवान थे, मैं इनका सेवक हूँ, रोज रात इनके चरणों में बैठकर इनका गुणगान करता हूँ।
3: आप धन्य है बाबा।
2: बेटे नित्य की तरह आज भी इनका भजन करूं तुम्हें कष्ट तो नहीं होगा?
3: कष्ट की क्या बात है, इसमें तो हमें परम आनंद होगा।
4: ये तो हमारा परम सौभाग्य है बाबा।
2: जैसी प्रभु की इच्छा।

0: नया सवेरा हो गया, स्नान करके प्रभु के दर्शन करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी।
1: क्या आप सच कह रहे साधु महाराज? हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, हमारी मनोकामना पूरी होगी।
2: जाओ बेटी, जाओ जाओ।
3: आओ गंगा, आओ गंगा।

से शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। ये हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है, ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
4: राम राम दोस्त राम, सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से। इसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा कहता हूं कि सुरक्षित चले, सुरक्षित घर पहुंचे, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कहीं ना कहीं मैंने आज आपको इशारा कर दिया कि आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। विषय होगा रोड सेफ्टी, और जब रोड सेफ्टी का हम जिक्र करते हैं तो जिक्र होता है एक एक्सपर्ट का, और जिक्र होता है जो इस क्षेत्र में महारत हासिल रखते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो कि हरफन मौला हैं। आप हिंदुस्तान टाइम्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और रोड सेफ्टी के लिए बहुत बहुत बहुत काम किया है। खुश मिजाज इंसान है, हरफन मौला है, आप हैं अंकुर शरण जी। तो अंकुर जी, सुरुशादा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम।
6: थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड अ ग्रेट ऑनर।
4: थैंक यू सर, वेलकम। कैसा लग रहा है शारदा विश्वविद्यालय के इस आंगन में आकर आपको?
6: बहुत खूबसूरत सफर रहा। जब मैं एंटर किया इस कैंपस में, लिटरली दिल खुश हो गया, क्योंकि जिस तरीके से ये यहाँ का वातावरण आप लोगों ने बनाया है, स्पेशली जो ग्रीन एनवायरमेंट आप लोगों ने जो क्रिएट किया, दिस इज रियली अमेजिंग एंड ऑसम। ऐसा जस्ट कि अंकुर, तो भाई मैं तो पर्यावरण से बहुत जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहूंगा कि पर्यावरण से हर कोई जुड़े और कहीं ना कहीं अपना योगदान देता रहे।
4: माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कम शब्दों में आपने रख दी और मैं इस बात को आगे लेकर जाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि एक पौधा अपने माँ के नाम जरूर लगाइए, इस धरा को हरा भरा करिए। और जब इस तरीके से इस आंगन का जिक्र हो रहा है, इस प्रांगण का जिक्र हो रहा है, तो जिक्र करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि हमारी जो टैगलाइन है सर, टैगलाइन ये है कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर, और यही वजह है कि यहाँ बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग होती ही रहती है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन सुरुशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और आज स्टूडियो में मेरे साथ एक खास मेहमान है। हिंदुस्तान टाइम्स में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहां पर आप सर्विस कर रहे हैं और सर्विस कर रहे हैं जन सेवा यानी कि रोड सेफ्टी पर बहुत धरातल पर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूं। आप हैं अंकुश शरण जी। और अंकुश शरण जी, एक लाइन है, बड़ी खूबसूरत लाइन है कि ए भाई जरा देख के चलो। ये लाइन है कहीं ना कहीं रोड सेफ्टी पर सटीक बैठती हैं। क्या कहना चाहेंगे रोड सेफ्टी के बारे में?
1: देखिए, रोड सेफ्टी एक अभिन्न अंग है हम सबका। हम चाहे जहां से भी आते हैं, जिस समाज को भी हम बिलोंग करते हैं, हम चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे हम बुजुर्ग हैं, कुछ भी है, आप सब सड़क को यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि सड़क पे चलते हुए हमें हमेशा ध्यान में तो रहना चाहिए, साथ ही साथ बहुत जरूरी है कि रोड सेफ्टी की प्राथमिकता को हमें नजरअंदाज कभी भी नहीं करना चाहिए। चाहे हम स्कूटर चला रहे हो, टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, हम लोग देखते हैं कि लापरवाही, कि हम लोग ने जिस एटीट्यूड में हम लोग रहते हैं, तो उसी एटीट्यूड के साथ अगर हम रोड पे चलते हैं तो डेफिनेटली उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है
0: जी।
1: तो थ्रू रोड सेफ्टी कैंपेन के द्वारा हम लोग बहुत सारी ऐसी जानकारियां लोगों तक साझा कर रहे हैं, साथ में वॉलंटियर्स नेटवर्क को पैन इंडिया लेवल पे हम लोग रोड सेफ्टी स्क्वाड की मदद से कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम वॉलंटियर्स हमारे बने, क्योंकि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। फिर अपने शब्दों को दोहराते हुए यही कहूंगा कि कम शब्दों में बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, बारंबार कहता हूं कि सुरक्षित चलें, सुरक्षित घर पहुंचें, सुरक्षित ऑफिस पहुंचें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जरा सी भी स्पीड आपकी ओवर स्पीड होती है तो कहते हैं ना कि अपने पर्स में से अपनी फैमिली का फोटो निकाल लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं एक अलार्म आपके दिमाग में घंटी बजेगी, नहीं यार मुझे ओवर स्पीड में नहीं चलना है। क्योंकि ओवर स्पीड में चलेंगे तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी। और जब आप अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे तो आपको याद रहेगा कि नहीं, सुरक्षित चलना है, सुरक्षित घर या सुरक्षित ऑफिस पहुंचना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। यह है ग्रेटर नोएडा का आपका अपना रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते समुदाय की बातें करते हैं, ज्ञान विज्ञान पढ़ने पढ़ाने जिंदगी को जीने की बातें करते हैं और बातें करते हैं रोड सेफ्टी के बारे में। ये एक ऐसा विषय जिसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। एक छोटी सी गलती की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, आपका अंग भंग हो जाता है या कभी कभी आपकी मृत्यु तक हो जाती है। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान टाइम से आप हैं अंकुर शरण जी। तो अंकुर जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: सर। अभी मैंने जिक्र किया कि अंग भंग हो जाता है, कभी कभी मृत्यु तक हो जाती है, तो ऑन ग्राउंड में अगर बात करूं आपसे धरातल पर मैं जानूं कि किस तरीके हालातों को आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से लोगों को ध्यान रखना चाहिए।
1: देखिए हम लोगों ने रोड सेफ्टी के ऊपर बहुत काम किया है और शासन प्रशासन के साथ मिलकर जो भी हो सकता है हम लोग उसकी अवेयरनेस कैंपेन्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि उसे धरातल पर लाना बहुत जरूरी हो गया है। हम लोग को चाहिए कि जो भी बातें हम लोग को बताई जाती है समझाई जाती है उन्हें हमें अपने दैनिक जीवन में उतारना है। वो सिर्फ लिखित बातें या कोरी बातें नहीं है, उसे हम जितना ज़्यादा गंभीरता से लेंगे अपनी लाइफ को हम बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं उसका तो इलाज है लेकिन हादसों का कोई इलाज नहीं है। उनका सिर्फ बचाव है कि जब हम सतर्क रहेंगे तो अपने आप को बचाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जिस समय कोई भी एक्सीडेंट होता है उस समय जो प्राइम टाइम जो होता है हम लोग का राइट गोल्डन आवर, उसके अंदर क्या हम
0: मॉर्निंग और इवनिंग टाइम
1: नहीं जो भी एक्सीडेंट हुआ उसके एक घंटे के अंदर,
0: अच्छा उस प्राइम टाइम की बात
1: प्राइम टाइम ओके, तो जो गोल्डन आवर होता है वो बहुत जरूरी होता है। लेकिन अब हम लोग क्या होते हैं कि भागा दौड़ी में इतने ज्यादा हो चुके हैं हमें ध्यान ही नहीं रहता। तो आज चाहे हम किसी के ऊपर भी दोषारोपण करें सबसे पहले हमें अपने ऊपर देखना है, अपनी स्पीड पे लगाम लगानी है, हमें समय पर पाबंद होके काम करना है। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि हम मूक बधिर होके ना चले। मैं हमेशा से एक रोड सेफ्टी स्क्वाड बनाने से पहले मैं खुद एक वॉलंटियर रहा काफी समय तक। जब भी कभी मैं देखता रोड पर कोई एक्सीडेंट हुआ तो जाने अनजाने मुझे अगर मैं नहीं भी जानता हूं उनको तब भी मैं अपनी गाड़ी से साइड लगाकर देखता, अगर गंभीर है तो इमीडिएटली फोन कर दिया। अगर दिल्ली एनसीआर के अंदर है तो हम लोग के पास एक अपनी टीम है, हम लोगों ने उस पर फोन करके ट्रैफिक के हम लोगों ने अपने ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं नोएडा का फरीदाबाद का गुड़गांव का एनसीआर लेवल का कि जिसमें डीसीपी ट्रैफिक से लेकर हर वो आला अधिकारी जो भी ट्रैफिक से जुड़ा है वो उसके अंदर लोग जुड़े हुए हैं ताकि हम लोग स्पीड में तुरंत कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट होता है या कहीं ऐसा जाम लग जाता है जो कि अननेचुरल है
0: जी,
1: तो उसके बारे में भी तुरंत हम लोग बता देते हैं ताकि उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया जा सके।
0: क्या बात है। लिसनर्स कहने का आशय यही है कि इसका अगर मैं क्रक्स निकालूं, इसका एक सारांश निकालूं तो उस वक्त आप देख हुए अनदेखा न करेगा, हो सकता है कि बड़ा पछतावा होगा जब आपको पता चले कि उस वक्त जो एक्सीडेंट हुआ था आपने वहां देखा नहीं मदद नहीं की, वो आपका कोई सगा संबंधी था, जिंदगी भर एक पछतावा रह जाता है। लेकिन आप देखिए और तुरंत पुलिस को सूचित करिए, पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है कि पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। और दूसरी बात, आज मैं देख रहा हूं वर्तमान समय में सरकार प्राथमिक उपचार के लिए खर्च भी कर रही है, जो इस तरीके रोड एक्सीडेंट्स के केसेस तुरंत पहुंचते हैं क्योंकि कोई सगा संबंधी उस वक्त वहां होता नहीं है। अंकुर शरण जी जो कि एक एक्सपर्ट के तौर पर रोड सेफ्टी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में बातें करेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में मेरे साथ एक खास मेहमान के तौर पर जुड़े हुए हैं, आप हैं अंकुश शरण जी। बहुत अच्छे एक पत्रकार के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, रोड सेफ्टी के साथ जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान टाइम्स से एक नामी गिरामी आपका ये अखबार, उससे आप जुड़े हुए हैं। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: रोड सेफ्टी के बारे में आपने जिक्र किया था कि लोग मूक बधिर यानी कि चुप हो जाते हैं, आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से पछतावा होता है कि काश मैं उस वक्त उस व्यक्ति की मदद कर देता जो कि मेरा सगा संबंधी था। जब ये शब्द आता है तो लोग दिमाग की बत्ती जलती है। मैं ये जानना समझना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट्स होते ही क्यों हैं, क्या एक वजह है कि हम सबको पता है कि ये हमारी एक लिमिट है, उस लिमिट को हम क्रॉस कर जाते हैं। ओवरटेक आप कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी लेन से ही क्रॉस कर रहे होते हैं। हम लोगों को देखते हैं कि रैश ड्राइविंग कर रहे होते हैं, इधर उधर से वो गाड़ी को ओवरटेक कर रहे होते हैं, एक्सीडेंट्स के बहुत ज्यादा केसेस हमारे सामने आते हैं। तो आपका अनुभव क्या कहता है?
1: देखिए, सबसे पहली बात तो है नेग्लिजेंस। ये एक ऐसा वर्ड है कि जो एक तो लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड नेग्लिजेंस, इसी वजह से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। हमें जब पता है कि आपके ऑफिस का टाइम 9 बजे है और आपके घर ऑफिस घर से ऑफिस पहुंचने में आपको 1 घंटा लगना है, तो आप 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पहले आप निकलिए,
0: क्या बात,
1: ताकि आप उस जो पीक आवर्स है उससे बचा जा सके। अब लोग क्या करते हैं कि अक्सर मैंने देखा है कि लोग पहले तो लेट निकले और उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि हम स्पीड पे ओवर स्पीडिंग करके, और क्योंकि जैसे फरीदाबाद से अब गुड़गांव जाते हैं तो पहाड़ी का रास्ता है, राइट, उस पे 60 से 80 स्पीड अलग अलग जगहों पे बनाई हुई है, लेकिन लोग अक्सर उस पे बहुत स्पीड में जाते हैं। अब क्या है कि उससे एक तो वो वन अरावली वन क्षेत्र भी है, कई बार उसमें गाय भैंस इस तरीके से बंदर वहाँ पे बहुत होते हैं, अचानक से कोई आ गया और अक्सर हम लोगों ने वहाँ पे एक्सीडेंट होते हुए देखा है। तो हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि भाई इन्फोर्समेंट को आप इतना मत उकसाओ कि वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस इस लेवल की कर दी जाए कि वो आप ही पे भारी पड़ जाए
0: जी।
1: प्रशासन के तौर पर, क्योंकि हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी
0: जुड़े,
1: उनकी बातों को भी हम लोग लेकर आते हैं, क्योंकि इट्स अ जैसे कहते हैं ना कॉइन के दो पहलू होते हैं, लाइक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उस तरीके से हम लोग ने ब्लेम तो तुरंत कर देते हैं कि भाई इनकी वजह से ये हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम सब डिसिप्लिन में अगर गाड़ी चलाएं, राइट, हमें ओवरटेक करने के बड़ी गंदी आदत है और वही गंदी आदत जो है वो अब एनसीआर से निकल के हम पहाड़ी क्षेत्रों में जब जाते हैं तो हम वही चीज करते हैं। तो सेम वे हम लोग की ये रडार पे हम लोग हमेशा देखते हैं लोगों को कि कौन कौन सी गाड़ियां अगर देहरादून के क्षेत्रों में गई हैं, तो हमारे पास वो सारा डेटा आता है कि देखिए सबसे ज्यादा एनसीआर की जो गाड़ियां होती हैं वो जाके इस तरीके से कर देती हैं। तो हमें लगता है कि अभी डिसिप्लिन को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, थोड़ा पेशेंस रखिए और इन्फोर्समेंट खुद पे आप रखिए ताकि आप भी सुरक्षित रहें और सड़क भी सुरक्षित रहे।
0: क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने हमारे लिसनर्स तक पहुंचा दिया। और बस हमेशा जब हम सारांश निकालते हैं, एक निचोड़ निकालते हैं, इस बात का सारांश या यूं कहें कि निचोड़ यही है, यकीन मानिए कि आपकी फैमिली, आपके माँ बाप भाई बहन, आपके छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं दरवाजे पर। जब एक दस्तक होती है वो खुश हो जाते हैं कि मम्मी मम्मी पापा आ गए, लेकिन जब खबर आती है कि आज उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई है, तो बहुत बहुत बहुत बुरा लगता है। ईश्वर के वास्ते, खुदा के वास्ते, जिनसे भी आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और अक्सर से दो लाइनें मैं खुद कहा करता हूं कि ये जो जान है दरअसल आपकी जान नहीं है, इस जान पर आपके माँ बाप भाई बहन सबका हक है, तो उनकी जान की खातिर अपनी जान का ख्याल रखिए, तो निश्चित तौर पर सब अच्छा होगा, बेहतर होगा, सुरक्षित चले, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरक्षा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सामुदायिक रेडियो स्टेशन का फर्ज यह है कि समुदाय में हमारे आसपास क्या खास हो रहा है उन बातों को हम जन जन तक पहुंचाएं। रोड सेफ्टी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन जाने अनजाने में लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से जिंदगी भर एक पछतावा रह जाता है कि काश मैंने यातायात के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन किया होता तो आज मैं सुरक्षित होता या अंग भंग नहीं होता। ये सारी बातें जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रोड सेफ्टी एक ऐसा विषय, इस विषय पर बात करने के लिए अंकुर शरण जी हिंदुस्तान टाइम्स से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर।
0: ऑन रोड जब मैं देखता हूं तो मुझे पता है कि राइट हैंड की जो लेन है वो कार के लिए है। ओवरटेक करना है तो राइट हैंड से हम करें
1: जी।
0: लोग गलत दिशा से ओवरटेक कर रहे होते हैं। इसके विपरीत भी सर हमने ये देखा है कि बसें जो लेफ्ट में चलनी चाहिए थी या ट्रक भी लेफ्ट में चलना चाहिए था वो राइट हैंड में जाके चल रहा है। कैमरास लगे हुए हैं। शायद मैंने जो अनुभव किया है कि हम या पुलिस प्रशासन इंतजार करता है कि मेरे पास कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, कंप्लेन नहीं हुई है, या यूं कहें कि कभी कभी वो स्वतः संज्ञान लेते हैं। चूंकि आप रोड पर काम कर रहे हैं आपका अनुभव वही बात निकलकर सामने आती है कि ये जो आपका एक्सपीरियंस है इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, ये सही है गलत है या क्या सुधार की आवश्यकता है?
1: देखिए हम लोगों ने सुना है ना प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती।
0: सही कर
1: हम लोग जब तक गाड़ी चला रहे हैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिस दिन आप सोचिए हजारों लाखों गाड़ियां रोड पे दौड़ रही होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाड़ी भिड़ती है
0: जी,
1: एक्सीडेंट होता है
0: जी,
1: लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं
0: जी,
1: उन सब को अगर हम लोगों ने जब देखा है तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि ओवरटेक अगर ये हुआ है, अगर गलत डायरेक्शन से हुआ है
0: जी,
1: तो पहली तो पेनल्टी उस इंसान के ऊपर आ जाती है कि जिसने ओवरटेक गलत तरीके से किया।
0: यानी कि जब एक्सीडेंट हुआ है तो सारा मतलब
1: ये सारा कुछ, क्योंकि एज पर जो रिकॉर्ड्स देखा जाता है जब प्रत्यक्ष गवाही जब ली जाती है या एफआईआर दर्ज होता है, क्योंकि आप ये देखिए इंश्योरेंस आप लोग क्लेम करते हैं, अगर मैं मान लीजिए कि इंश्योरेंस वाला हूं तो मैं भी तो देखूंगा ना कि भाई हमारी कंपनी अगर आपको इंश्योरेंस दे रही है तो कहीं आप गलत ड्राइव तो नहीं कर रहे हैं, कल आप वो मैल प्रैक्टिस में तो नहीं है कि आपने नशा किया हुआ है तो आप नल एंड वॉइड हो जाता है, गलत डायरेक्शन से आपने ओवरटेक किया तब वो नल एंड वॉइड हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे ध्यान में रखने की जरूरत होती है, लेकिन आजकल क्या है कि हम लोगों ने अपना लाइसेंस बनवा लिया, हमारे हाथ में फोन आ गया, महंगी कारें आ गई, तो सोचा चलो अब तो ये रोड अपनी है, रोड आपकी नहीं है, रोड एक समाज की है, समाज के भी आप अभिन्न हिस्सा हैं। जब हम लोगों ने देखा नितिन गडकरी साहब से जब मुलाकात हुई और एक युवा रोड सम्मेलन एक हुआ था उसके अंदर हमें उनसे मिलने का मौका मिला, तो वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छे रोड्स तो बना दिए लेकिन इस पे चलने की जिम्मेदारी आप सबकी है,
0: बेशक
1: युवाओं की है
0: बहुत से।
1: अगर आपको बहुत रक्तदान देना है तो सड़क पे मत दें। हमारे साथ बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं जो कि आपसे रक्त मांग रही हैं, तरीके से दें ताकि किसी का भला हो सके। मेरे एक अजीज मित्र हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र जी,
0: जी जी
1: उनकी भी कहानी ऐसी दिलचस्प है कि जब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज दम तोड़ रहे रोड पर तब उन्होंने किस तरीके से प्रतिबद्धता दिखाते हुए अपने एक जिगरी दोस्त की जब उनकी डेथ हुई ऑन रोड उसके बाद उन्होंने उसको एक पॉजिटिव तरीके से लेते हुए देखा कि वो जो उनका दोस्त की डेथ हुई वो बिकॉज ऑफ वो हेलमेट उस समय नहीं पहने थे, वो इकलौते बेटे थे अपने माँ बाप के, और इस बात इस हादसे के बाद उन्होंने संकल्प लिया और आज वो हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से पूरे देश में प्रचलित हैं। और हम लोगों ने उनके साथ भी मिलकर रोड सेफ्टी स्क्वाड के साथ मिलकर बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हम लोग प्लान कर रहे हैं, और अब आपके इस माध्यम से भी हम लोग चाहेंगे कि लोग सुरक्षित रहें। बस
0: क्या बात है, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है लिसनर्स। मैं तो आशा करता हूँ कि बस ये छोटी छोटी बातें इनको नजरअंदाज ना करिए। माशाल्लाह जिंदगी बहुत बहुत बहुत खूबसूरत है। आप घूमना चाहते हैं, आप किसी शादी में शिरकत करना चाहते हैं, जिंदगी को आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो भाई साहब ये तभी संभव होगा जब आप यातायात के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन करते हुए अपने गंतव्य अर्थात बोले तो डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचेंगे सुरक्षित, तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बातों का जो सिलसिला लगातार जारी है और एक अच्छे विषय पर हम बात करें और एक अच्छी बात हम बात करेंगे ब्रेक के उस पार, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोग रील के चक्कर में उनकी रेल बन जाती है। क्या है ये सवाल, जवाब क्या होगा, जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल इन सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: या फिर 5,000 का चालान कोई बड़ी बात नहीं है, रील के चक्कर में मेरे पास व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे, और कभी कभी ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि उनके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता, यूं कहें कि अंग भंग या वो खुद नहीं होते दुनिया में। क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, व्यूज के चक्कर में दुनिया पागल हो रही है। अब अगर आपने रोड को भी आपने सोच लिया कि वहां पे भी हमें व्यूज लेना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका इंटरव्यू जो है वो अखबारों में छप जाए। अच्छे काम के लिए आप लोग छपें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो युवाओं से एक ही एक अनुरोध है कि रील्स के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। अगर आपको रील वाकई में बनाना है तो आप सड़क सुरक्षा के ऊपर बनाइए और बना के रोड सेफ्टी स्क्वाड को टैग कीजिए। हमारी संस्था है रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन, राइट, जो कि हरियाणा सरकार के साथ जुड़ी हुई है। बहुत सारा काम हम लोग फरीदाबाद, गुड़गांव, चंडीगढ़ में,
0: और आप कह सकते हैं गगन आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद से मैं आता हूं।
1: आप तो हैं ही जुड़े।
0: थैंक यू सर।
1: तभी सर हम लोग को कोशिश रहती है कि हम युवाओं को किस तरीके से लीड बाय सेटिंग एग्जांपल्स दें। और अगर आप वाकई में अच्छी रील्स बनाना आपको आता है तो प्लीज क्यों ना आप सड़क सुरक्षा के ऊपर ऐसी रील्स बनाएं ताकि उसको हम अपने ऑफिशियल हैंडल्स पे डालें। हरियाणा पुलिस से लेकर ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपकी चीजों को आगे प्रदर्शित करेगी और प्रॉपर चैनल्स के साथ प्रदर्शित करेगी, तो डेफिनेटली उसमें व्यूज भी मिलेंगे और आपको कहीं ना कहीं हम लोग सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स भी दिलवाएंगे।
0: क्या बात है, व्यूज भी मिलेंगे और आपकी न्यूज भी छपेगी। yes. अच्छी सकारात्मक दिशा में। सर वक्त का इशारा लगभग हो ही चुका है और मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें रही। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोबारा जब भी आप इस तरफ आए तो जरूर आएगा, क्योंकि भाग दो हम करना चाहेंगे क्योंकि बातें बहुत ज्यादा है, समय मेरे पास कम है। एक छोटी सी वाकया को अक्सर हम लोग देख रहे होते हैं, आप भी हम भी, अननेसेसरी लोग क्या मानसिकता होती है, उनको दिख रहा है कि वो 500 मीटर तक गाड़ियां खड़ी हुई हैं और पीछे से पैं पौ, यानी अनावश्यक तौर पर वो हॉर्न बजा रहे होते हैं। इस मानसिकता से लोग कैसे निकलें, कैसे वो अपने आप को एक सही दिशा में लेकर जाएं, उन लोगों के लिए या यूं कहें कि एक क्रक्स, एक संदेश क्या होगा हमारे लिसनर्स के लिए?
1: देखिए, मेंटल हेल्थ मैटर्स।
0: क्या बात है।
1: अगर आप मेंटली अनफिट हैं और अगर आपकी वजह से दूसरे परेशान हो रहे हैं, तो निसंदेह लॉ ऑफ कर्मा आपको इस तरीके से वो मेंटल प्रेशर डाल देगा कि या तो आप गाड़ी चलाने लायक नहीं बचेंगे। और हम लोगों ने एक बड़ा सिद्धांत के ऊपर हम लोग काम करते हैं कि अगर आपने वाकई में एक इंसानियत दिखानी है तो आप वहां पे हॉकिंग का प्रयोग कीजिए जहां पे इसकी वाकई में आवश्यकता है। भारत में भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पे बहुत ही डिसिप्लिन में लोग गाड़ी चलाते हैं और हॉकिंग, स्पेशली अगर आपको देखना है तो जाके आप चंडीगढ़ में जाके चलाइए गाड़ी, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने तरीके से लोग वहां पे गाड़ी चलाते हैं।
0: सर ये दूर की बात आपने की है, अगर नियम कायदे कानून देखना है तो जनपद के आसपास देखें, सिर्फ वही नियम लगा।
1: आप ये देखिए कि अगर वही वाली बात है ना, स्ट्रिक्टनेस एंड एनफोर्समेंट, जब दिल्ली पुलिस आपके जब तत्पर होती है, तत्पर है, तो आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं। और ये डिसिप्लिन होना चाहिए,
0: होना ही
1: चाहिए। मैं तो ये चाहूंगा कि एनसीआर लेवल पे जहां पे भी अगर आपको पुलिस दिखती है, और पुलिस ही नहीं, आप खुद में कंट्रोल रखिए सारी चीजें, क्योंकि कोई देखे ना देखे ऊपर वाला देख रहा।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी चर्चा रही है सर आपके साथ और बहुत अच्छे आप वक्ता है। मैं तो ये कहूंगा कि आप इधर भी आकर, यानी कि ऐसे आरजे के तौर पर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत अच्छी, अच्छा ज्ञान है और अच्छी तरीके से कट टू कट बात आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई है। कुछ और कहना चाह रहे हैं
1: गगन जी? एक आपके माध्यम से मैं चाहूंगा, जो भी लिसनर्स हैं, आज भारत को बहुत सारे वॉलंटियर्स की जरूरत है। लीडर्स तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन अगर आप सही माने में अगर वॉलंटियर बनते हैं और सड़क सुरक्षा के प्रति अगर आप जागरूक हैं भी और करना चाहते हैं, तो प्लीज आप शादा को सुनिए 90.8 FM। और साथ ही में जो लिसनर्स आपको लगता है कि हाँ, दे वांटेड टू बी पार्ट ऑफ अवर रोड सेफ्टी स्क्वाड, प्लीज डू कनेक्ट विद अस। हम लोग ट्विटर पे भी मौजूद हैं,
0: सो प्लीज टेल अस सर वो डिटेल्स क्या है, वो आईडी क्या है या कांटेक्ट नंबर क्या है।
1: सीधा कि आप ट्विटर पे एक्स पे जाके रोड सेफ्टी स्क्वाड डालिएगा, हमारा पेज उसके अंदर आ जाएगा। साथ ही में जो लिखना चाहते हैं कुछ, वो प्लीज लिख के दें। हम लोग ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओस के साथ मिलकर इसको पूरे भारतवर्ष में चीजें बढ़ा रहे हैं, प्रचार प्रसार के साथ माध्यम से। आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया, जिस भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं, प्लीज जुड़िए ताकि लेट्स बी वोकल फॉर लोकल रोड सेफ्टी।
0: क्या बात है, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से सर एक बार पुनः बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि समाज को आपकी आवश्यकता है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बस लिसनर्स यही कहूंगा कि समझदारी दिखाइए, अपने आप को

बीमार मत प्रदर्शित करेगा ऑन रोड, जिस तरीके से हमारे गेस्ट ने ये बात रखी है कि कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी आप दिखा रहे होते हैं, क्योंकि अनावश्यक तौर पर जब आप हॉर्न बजाते हैं और अनावश्यक तरीके से गाड़ी को जब आप ओवरटेक करते हैं, या कुल मिलाकर यही कहूं कि यातायात के नियमों का हमें अच्छी तरीके से पालन करना है। घर में, ऑफिस में कहीं ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, तो बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और यातायात के नियमों का पालन करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए और बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सोमवार से शनिवार सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ, और इसके अलावा फीडबैक कमियां खूबियां जरूर बताएगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। 01204060205 अर्थात 120 40 60 205, इसके अलावा 90.8fm@sharda.ec.in पर भी आप हमें मेल के जरिए मेल जोल बढ़ा सकते हैं। वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9-11, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार। They love it when

0: कुछ नहीं।
1: Lovable investments are subject to market risk. Read all skin related documents carefully.
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हूँ गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ स्टूडियो की घड़ी में 9:03 हो चुके हैं। 20 तारीख है, बोले तो बंडे का दिन और ईश्वर से खुदा से पिता परमेश्वर से यही दुआ यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे मंगलमय गुजरे कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिलहाल क्या है खास जानेंगे जरूर मगर एक छोटे से ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद सो डोंट गो एनीवेयर एटीट्यूड ऑल योर सुरुशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। क्या बात है, आए हैं

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

स्वागत इस्तकबाल खुशामदीद खैर मकदम मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। फिलहाल दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है वो मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे मौसम में ग्रेटर नोएडा और एनसीआर में आज बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है और वही मैक्सिमम टेम्परेचर इस बीच 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान यानी कि लोएस्ट जो तापमान रहेगा वो रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और वातावरण की अगर मैं बात करूं तो वातावरण में नमी अधिक रहेगी जिससे उमस भरी गर्मी का एहसास हो सकता है। और हिंडन नदी का जिक्र भी कर रहे हैं एक्सपर्ट, कह रहे हैं कि हिंडन नदी का जो जल स्तर है वाटर लेवल बढ़ने की वजह से ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के जो डूब क्षेत्र हैं फ्लड प्लेन में अलर्ट जारी कर दिया गया है और नदी का जो पानी है कई निचली जो कॉलोनियां हैं वहां तक पहुंच चुका है और इसलिए प्रशासन लगातार सुरक्षा और बचाव कार्य की निगरानी कर रहा है। तो आने वाले समय के लिए आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको पहले से अलर्ट कर दें कि हमारे आसपास क्या खास हो रहा है और आने वाले मंगलवार और बुधवार को भी हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है जिससे तापमान में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की जा सकती है। ऐसे मौसम में अपनी सेहत का ख्याल रखिए, खान पान का ध्यान रखिए और आवन जावन यानी कि आते जाते वक्त गड्ढे नजर नहीं आते, दिक्कतें वहीं हो जाती हैं और पोल में भी करंट उतर जाता है तो यानी कि ध्यान देना बहुत जरूरी है, लापरवाही मत बरतिएगा। सच बात तो है कि जान है तो जान है, सारी मुश्किलें आसान है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। स्टे ट्यून्ड ऑल सुरशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। पकड़ बम बम पकड़ बम बम बम कैलाश खेर की आवाज में आज मंडे, ये गाना तो बनता है ना।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
2: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
1: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
2: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: बिल्कुल आपने सही सुना कि टीबी हारेगा, देश जीतेगा। और यही एक वजह के स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही तो लाभ कई। निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि जब आपकी सेहत सही रहती है, आप सेहतमंद हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी आप है। लेकिन जब आपकी सेहत आपके साथ नहीं है तो दिक्कतें परेशानियां हमारे साथ बहुत ज्यादा जुड़ जाती हैं। और यही बात को ध्यान में रखते हुए आज सुबह 10 बजे एक विशेष कार्यक्रम टीबी टेस्टिंग, यानी कि टीबी की जांच क्यों जरूरी है। दो हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो आप जांच कराइए, टीबी को हराइए, समय पर जांच, सही इलाज, स्वस्थ परिवार, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बिंदु हैं कि लक्षण क्या है, कौन कौन से टेस्ट जरूरी हैं, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं मिल रही हैं तो वो टीबी से संबंधित कौन कौन सी दवाएं हैं, समय पर जांच कराना बहुत जरूरी है और टीबी को हराना है, देश को जिताना है। यही एक विशेष कार्यक्रम सुबह 10 बजे सुनना ना भूलेगा। सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से आज सुबह 10 बजे। और यही एक विशेष कार्यक्रम आने वाले समय में फिर हम आप तक पहुंचाएंगे, यानी कि 22 जुलाई को। तो आज ये विशेष कार्यक्रम सुनो शारदा 90.8 FM पर आप जरूर सुन सकते हैं और सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक लगातार ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, ये तमाम बातें हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। तो 0120 यानी कि 120 शहर का STD कोड लगाना ना भूलेगा। नंबर हो जाता है 40-60-205, उसके जरिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं और आपके लिए शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो आप सबके लिए खुले हुए हैं, क्योंकि वर्तमान समय में फुटफॉल बहुत ज्यादा हो रही है, लोग आ रहे हैं एडमिशन के लिए, एडमिशन का माहौल चल रहा है। तो यही कहूंगा कि एक छत के नीचे बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को समझने को मिलेंगे, तो जब आप यहां आएंगे तो आप यहीं के होकर रह जाएंगे। जीना सिर्फ मेरे लिए, फ्रॉम द मूवी जीना सिर्फ मेरे लिए का ये टाइटल ट्रैक। हर कोई ये चाहता है कि जीना सिर्फ मेरे लिए, लेकिन आजकल रिश्ते हुए नजर आ रहे हैं, रिश्ते तार तार होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिंदगी बहुत खूबसूरत बनाइए, प्यार के साथ रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग। आए है बहुत खूबसूरत।

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-11-6666। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: बिल्कुल आपने सही सुना कि सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। एक जरूरी सूचना मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और बहुत सावधानी से इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप इस तरफ आ रहे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ या दिल्ली NCR में कहीं आना जाना आपका लगा हुआ है, तो मुझे लगता है कि पुलिस की जो बात है, ट्रैफिक पुलिस की जो बात है, उसको आपको बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एक तो बारिश का मौसम, ऊपर से ये एडवाइजरी, अगर आप कहीं फंस गए तो यकीन मानिए कि दिक्कतें आपके सामने हो सकती हैं। लेकिन पुलिस लाइन ने जो ट्रैफिक पुलिस वाले भाई साहब हैं, उन्होंने एक नंबर भी शेयर किया है, तो निष्कर्ष निकल कर यही सामने आ रहा है कि संसद मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में आज ट्रैफिक अलर्ट रहेगा और कई रास्तों से आपको बचने की बहुत ज़रूरत है। कुछ चौराहों पर पुलिस सतर्क है, बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं, डायवर्जन भी लागू कर दिया गया है, तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा। और भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 163 भी लागू है और इसलिए दिल्ली के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन केवल जंतर मंतर के निर्धारित स्थल पर पूर्व अनुमति के साथ ही किए जा सकते हैं। और ऐसे में संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। यानी कि एक तरफ मानसून सत्र की तैयारी और दूसरी तरफ जंतर मंतर की भी बात निकल कर सामने आ रही है, तो आते जाते वक्त कहां कहां दिक्कतें परेशानियां आपके सामने हो सकती हैं। तो ट्रैफिक की अपडेट यह है कि संसद सत्र के दौरान रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू, मौलाना आजाद रोड के कामराज मार्ग, रायसीना रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट, अशोका रोड, ताल कटोरा रोड और पंडित पंत मार्ग, रकाबगंज गुरुद्वारा रोड पर ट्रैफिक का दबाव सबसे अधिक रहेगा। इन सड़कों पर समय पर सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक को रोका जा सकता है या डायवर्ट किया जा सकता है और ऐसे में आप वैकल्पिक रास्ते का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहीं एक नंबर भी जारी कर दिया गया है, उसके बारे में कुछ और डिटेल है जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑलवेज सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।
2: कुछ लोग कह रहे हैं पहले बता देते तो हम रह नहीं दे और ये सब डाल के छुट्टी मान लेते।
1: नहीं, सुरक्षा बहुत जरूरी है अगर संभव है तो।
2: हाँ, और मतलब समझ रहे ना, गुड मॉर्निंग।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

चलिए हम भी यही कहते रहते हैं कि प्यार करते रहिए, खुश रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और इसीलिए शारदा 90.8 एफएम एक विशेष कार्यक्रम चलाता है सुबह 10 बजे रेडियो ओपीडी के तहत। विशेष कार्यक्रम यानी कि टीबी पर आधारित ये कार्यक्रम सुनना ना भूलेगा। और सच बात तो है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा। लापरवाही मत बरतिएगा, वक्त रहते हुए अपना इलाज कराइए, और इलाज जब आप कराते हैं तो वक्त रहते हुए दिक्कतें परेशानियां बहुत ज्यादा कम हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे आसपास और क्या खास है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि संसद का मॉनसून सत्र शुरू आज से हो रहा है, और साथ ही साथ कुछ दिक्कतें परेशानी जंतर मंतर की वजह से ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। तो उस बात को ध्यान रखते हुए आप ऑफिस निकल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, या घर जा रहे हैं तो भी ध्यान रखिएगा, और संभव हो तो 10-5 मिनट पहले ऑफिस से घर निकल सकते हैं, या घर से भी ऑफिस के लिए कुछ समय पहले आप निकल सकते हैं। अब बात आती है ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर की, तो 1095 एक नंबर यानी कि 1095, दूसरी बात 011-258 और 5×4, 011-258 और 5×4, इस तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है 8750871493। आई रिपीट वंस अगेन 8750871493। और कुछ मेट्रो स्टेशन्स भी बंद किए गए, उसके बारे में भी मालूमात निकल कर सामने आ रही है कि जनपथ में पटेल चौक और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय सुबह सुरक्षा कारणों की वजह से बंद किए गए थे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि डीएमआरसी ने अब इनके गेट और इंटरचेंज जो सुविधाएं हैं दोबारा खोल दी हैं, यानी कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इसके बारे में भी आप मालूमात हासिल कर आप आगे बढ़ेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सोर्स आर द 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। 9:47 हो चुके हैं, 20 तारीख है और क्या अपडेट है उसके बारे में जान लेते हैं। बड़ी निगाहें थी, बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है फीफा वर्ल्ड कप का और उसका जो रिजल्ट है वो हम सबके सामने आ चुका है। स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना का जो मुकाबला था वो देखते ही बन रहा था और फाइनली स्पेन ये मुकाबला जीत चुका है और 1-0 से अर्जेंटीना को हराया गया है। और उसके बाद जो खुशी का माहौल है, जो खुशी की लहर है, फैंस में देखते ही बन रही है। लेकिन जो हार चुके हैं, जाहिर सी बात है कि मेहनत कर वो यहाँ तक पहुँचे और ये कहीं ना कहीं गम है, एक टेंशन है और जिसकी वजह से वो आंसू जो हैं वो खुद ब खुद आँखों के रास्ते निकल रहे हैं। लोग अपने जज्बातों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं कहीं जज्बातों पर काबू नहीं रख पा रहे, जिसकी वजह से छोटी मोटी दिक्कतें परेशानियों की जो अपडेट्स हैं वो भी हमारे सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल इस खबर के साथ, इस कहते ना कि इस क्षण को हम लोग जीना चाहते हैं और स्पेन को लख लख बधाइयाँ, बहुत बहुत तेरी दुआएँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपडेट ये भी सामने आ रही है कि स्पेन ने दूसरी ओर 16 साल का जो सूखा था वो ख़त्म किया है। 16 साल बाद उनकी झोली में ये अवार्ड आया और मेहनत के बाद जो रिजल्ट है वो हम सबके सामने। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार कभी हुआ नहीं करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। दोनों ही टीमें बहुत अच्छा खेलें, इतना अच्छा खेलें कि बस कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सच बात तो ये कि नियति को, समय को, डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। तो इस वजह से स्पेन को लख लख बधाइयां, बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

भीगी सी भागी सी फ्रॉम द मूवी राजनीति, अंतरा मित्रा और मोहित चौहान की आवाज में। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं गगन आपके साथ। बारिश के मौसम में ऐसे गाने तो बंद है ना कहीं पुरानी यादें ताजा हो जाती है, बारिश का लुत्फ उठाएगा, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखेगा, लापरवाही मत बरतेगा। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं गगन आपके साथ। 9:53 हो चुके हैं और वक्त का इशारा लगभग आपसे अनुमति ले लेने का होता है, लेकिन जाते जाते ग्रेटर नोएडा में क्या खास हो उसके बारे में भी जान लेना समझ लेना बहुत जरूरी है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपनी लोकल अपडेट्स आप तक ना पहुंचाएं। तो सुनने में आ रहा है कि DMIC टाउनशिप के लिए बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ग्रेटर नोएडा का डाड़ा गोल चक्कर रोड अब 6 लेन का होगा और जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा एक और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तालाब पोखरों पर अवैध कब्जा का ब्यौरा दें, ऐसा NGT ने DM साहब को कहा है। तो अगर ये लोग करते हैं तो बहुत गलत बात है, क्योंकि पर्यावरण को हमें बचाना है, तालाब पोखरों को हमें बचा कर रखना है और पौधे बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत आवश्यकता रहेगी, बिकॉज क्योंकि बहुत सारी विकास योजनाएँ आ रही हैं। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, तो हमें लगता है कि छोटे छोटे कदमों से जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी मंजिल को हम हासिल कर सकते हैं। और बस ये कहना चाहूँगा, वक्त इशारा अनुमति ले रहा हूं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आजकल कहीं ना कहीं आग की घटनाएं भी घट रही हैं, उस पर काबू पाने के लिए बस यही तरीका है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी कि सावधानी बरतेगा, लापरवाही मत बरतेगा और ईश्वर सब अच्छा करेगा, है ना। सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ। 120-40-60-205 पर आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, और 90.8 FM @sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। लुट ले गया फ्रॉम द मूवी धुरंधर फिल्म का ब्यूटिफुल ट्रैक, सिमरन चौधरी की आवाज, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं, अलग लेकिन गड्डी पूरी होश आवाज में चलाएगा। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: जनाब, अगर आपको खांसी है, खांसी लगातार है, तो मत करना इंतजार, समय पर जांच कराओ, टीबी को दूर भगाओ, सेहत सही लाभ कई। राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा बहुत अच्छा कार्यक्रम लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने श्रोताओं के लिए। स्मार्ट के साथ मिलकर हम एक विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही तो लाभ कई। यकीन मानिए कि अगर आप सेहतमंद हैं तो दुनिया जहान की खुशियां आपके दामन में हो सकती हैं। आपके पास रुपया बहुत ज्यादा है लेकिन आप तंदुरुस्त नहीं है, आपकी सेहत आपके साथ नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपके साथ दिक्कतें परेशानियां बहुत ज्यादा होंगी। ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से दुआओं में अगर आप कुछ मांगना चाहते हैं, यही मांगिएगा कि हे मालिक, मेरी जो काया है वो निरोगी काया रहे। चलिए, इन प्यारी प्यारी दुआओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगर आप हमारे नियमित श्रोता हैं तो आपको याद होगा कि हम पहले भी टीबी यानी तपेदिक पर कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर इस विषय पर लौटे हैं। वजह है कि टीबी आज भी हमारे देश में एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। मैंने खुद कई बार गांव में लोगों को कहते सुना है, अरे टीबी तो पहले हुआ करती थी, अब कहां होती है। कुछ लोग कहते हैं, हम तो ठीक ठाक खाते पीते हैं, हमें टीबी कैसे हो सकती है। और कुछ लोग तो महीनों खांसी होने के बाद भी कहते रहते हैं, मौसम बदला है, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या टीबी केवल कुछ लोगों को होती है? क्या हर खांसी साधारण होती है? और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को टीबी हो जाए तो उसकी पहचान कैसे होगी? जी हाँ, आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, खासकर टीबी की जांच के बारे में। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कब करवाने चाहिए, क्या सरकारी अस्पतालों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, और अगर समय पर जांच हो तो कैसे एक व्यक्ति ही नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रह सकता है। भाई, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी अपनी टीकन देवी जी, जो हमेशा कठिन स्वास्थ्य विषयों को आसान भाषा में समझाती हैं। भाई, बहुत बहुत स्वागत है टीकन भाभी आपका।
1: धन्यवाद आरजे बाबू जी, और मेरे सभी श्रोता भाई बहनों को मेरा प्यार और विश्वास देने के लिए धन्यवाद। आरजे जी, आपने बिल्कुल सही कहा, टीबी पर बार बार बात करना जरूरी है, क्योंकि आज भी बहुत से लोग लक्षण के बावजूद जांच नहीं करवाते। कई बार बीमारी सामने होती है लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाते। दरअसल आज की चर्चा शुरू करने से पहले मुझे एक महिला की याद आ रही है जिसकी कहानी मैं भूल नहीं सकती। हमारे पड़ोस के गांव में सरला देवी नाम की एक महिला थी, सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। पूरे इलाके में लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। लगभग 35 साल तक उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, फिर एक दिन रिटायरमेंट हो गया। शुरुआत के कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि शरीर पहले जैसा नहीं रहा, हमेशा थकान बनी रहती थी। लोग पूछते क्या हुआ तो वो हंसकर कह देती थी, अब उम्र हो गई है, पहले जैसी ताकत कहाँ रहेगी। कुछ समय बाद उनकी भूख कम होने लगी, कपड़े ढीले होने लगे क्योंकि वजन घट रहा था, शाम होते होते बुखार आने लगा, रात में पसीना भी आता था, फिर खांसी शुरू हो जाती। लेकिन उन्होंने तब भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि अब नौकरी नहीं रही, इसीलिए शरीर सुस्त रहता है। परिवार वालों ने भी यही सोचा कि उम्र का असर है। ऐसे करते करते लगभग 2 महीने निकल गए। फिर एक दिन उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कई जांचें लिखी, एक्सरे हुआ, बलगम की जांच हुई और फिर रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखकर पता चला कि सरला देवी को टीबी है। जब उन्होंने यह सुना तो सबसे पहले यही कहा, काश मैंने पहले जांच करवा ली होती।
0: टीकन देवी, आपकी कहानी को सुनके मैं खो गया। सच कहूं टीकन भाभी, ये कहानी सुनकर लगता है कि सरला देवी अकेली नहीं है, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो लगातार कमजोरी, वजन घटना, बुखार या खांसी को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, और शायद यही वजह है कि बीमारी बढ़ जाती है। लेकिन अब एक बुनियादी सवाल पूछना बहुत जरूरी है। हम बार बार टीबी का नाम ले रहे हैं, लेकिन आखिर टीबी है क्या?
1: देखिए साथियों, टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस नाम के जीवाणु से होती है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन हड्डियों, लिम्फ नोड्स, रीढ़, किडनी, दिमाग जैसे अन्य अंगों पर भी असर करती है। इसीलिए टीबी को सिर्फ खांसी की बीमारी समझना सही नहीं है।
0: लेकिन भाभी, लोग तो टीबी का नाम सुनते ही डर जाते हैं। क्या हर टीबी मरीज दूसरों में बीमारी फैलाता है?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। टीबी दो तरह की हो सकती है। एक लेटेंट टीबी, जिसमें शरीर में कीटाणु होते हैं लेकिन वे सक्रिय नहीं होते। ऐसे व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं होते और यह बीमारी भी नहीं फैलाता। दूसरा एक्टिव टीबी, जिसमें कीटाणु सक्रिय होकर बीमारी पैदा करते हैं। फेफड़ों की एक्टिव टीबी दूसरों तक वो फैला सकता है।
0: तो दोस्तों, इस बात को जानना समझना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार की टीबी है, टीबी क्या है, यही सारी बातें हो रही हैं। ठीक है भाभी, अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये टीबी फैलती कैसी है।
1: आरजी बाबू, जब फेफड़ों की टीबी वाला व्यक्ति खांसता है, छींकता है, बोलता है या गाता है, तो हवा में बहुत छोटे छोटे कण फैलते हैं। इन्हें सांस के साथ अंदर लेने पर संक्रमण हो सकता है, खासकर बंद और कम हवादार जगहों पर।
0: गांवों में लोग कहते हैं कि साथ खाने, हाथ मिलाने या बर्तन साझा करने से टीबी फैल जाती है।
1: नहीं नहीं, ये पूरी तरह से गलत फहमी है। टीबी हाथ मिलाने, साथ खाना खाने, बर्तन साझा करने, गले या सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल करने से नहीं फैलती, लेकिन मरीज से दूरी नहीं बल्कि सहयोग की जरूरत होती है इस वक्त पर।
0: किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? ठीक है भाभी,
1: आरजे बाबू, इस बात का ध्यान रखिए कि अगर दो हफ्ते से ज्यादा खांसी रहे, बार बार बुखार आए, रात में पसीना आए, वजन घटे, भूख कम लगने लगे, कमजोरी महसूस हो, सीने में दर्द या बलगम में खून आए, तो तुरंत टीबी की जांच करानी चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों, इस बात पर अमल करिएगा और फरमाइएगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या भारत में आज भी टीबी बड़ी समस्या है?
1: भारत में अच्छी प्रगति की है आरजे बाबूजी। मैं आपको एक डेटा के अनुसार बताना चाहूंगी कि 2015 से लेकर 2024 के बीच नए टीबी मामलों में लगभग 21%, यानी टीबी से होने वाली मौतों में लगभग 28% की कमी आई है। लेकिन आज भी कई लोग देरी से जांच करवाते हैं, इसीलिए जागरूकता और समय पर जांच कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही डाटा बताता है कि पहले 21% थी टीबी से मरने वालों की संख्या, लेकिन 2024 तक पहुंचते पहुंचते ये डाटा बताता है कि 28% तक की कमी सिर्फ एक सही समय पर जागरूकता और समय पर जांच उनकी जान बचा सकता है।
0: बिल्कुल, डेटा की बात हुई और साथ ही साथ टीकन भाभी ने दोस्तों जागरूकता की बात की, यानी कि अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं टीकन भाभी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या कुछ लोगों में टीबी का खतरा ज्यादा होता है?
1: जी हाँ, छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, HIV और डायबिटीज से प्रभावित लोगों, कुपोषित व्यक्तियों, भीड़भाड़ वाले घरों में रहने वालों और टीबी मरीज के करीबी संपर्क में रहने वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और याद रखिए, अगर घर में एक व्यक्ति को टीबी है तो पूरे परिवार की जांच होना बेहद जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा दोस्तों, मैं भी इस बात को दोहराना चाहूंगा कि अगर घर में एक व्यक्ति को टीबी है तो पूरे परिवार की जांच बहुत जरूरी है। यानी अगर परिवार में किसी को टीबी है तो ये सोचकर नहीं बैठा जाना चाहिए कि बाकी सब ठीक हैं, पूरा परिवार सतर्क रहे, यही समझदारी है। लेकिन अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगातार खांसी, बुखार या वजन कम होने जैसे लक्षण हैं, तो डॉक्टर आखिर कैसे पता लगाते हैं कि उसे सचमुच टीबी है?
1: सवाल आपका बहुत वैलिड है आरजे बाबू। कई बार लोग आज भी सोचते हैं कि डॉक्टर सिर्फ लक्षण देखकर कह देते हैं कि टीबी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। टीबी की पुष्टि हमेशा जांच के आधार पर की जाती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग बार बार कहता है लक्षण हो तो जांच करवाएं। और अच्छी बात ये है कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTEP के तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में टीबी की जांच पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है। ध्यान दीजिएगा, मुफ्त उपलब्ध है।
0: दोस्तों, इस बात को मैं भी रिपीट कर देता हूँ कि जांच टीबी की मुफ्त है। तो सबसे पहले कौन सी जांच की जाती है टीकन भाभी?
1: सबसे पहले और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जांच है बलगम की जांच। जब किसी व्यक्ति को लगातार खांसी होती है तो उनके बलगम का नमूना लिया जाता है, फिर प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है कि उसमें टीबी के जीवाणु मौजूद हैं या नहीं। ये जांच वर्षों से टीबी पहचानने में मदद करती रही है और आज भी ये सबसे ज्यादा जरूरी है।
0: दोस्तों, आजकल लोग CBNAAT और टोरेंट जैसे नाम भी सुनते हैं। कई श्रोताओं को शायद समझ नहीं आता कि ये क्या होते हैं।
1: बिल्कुल, ये आधुनिक तकनीक पर आधारित मॉलिक्यूलर टेस्ट है। इसकी खासियत ये है कि ये काफी जल्दी परिणाम दे सकते हैं और केवल यह नहीं बताते कि टीवी है या नहीं, बल्कि कई मामलों में ये भी पता लगा सकते हैं कि कहीं बीमारी सामान्य दवाओं के प्रति प्रतिरोधी यानी ड्रग रेजिडेंट है या नहीं। यही जानकारी डॉक्टर को सही इलाज चुनने में मदद करती है। आज देश भर में ऐसी जांच सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया गया है ताकि लोगों को सही समय पर सही निदान मिल सके।
0: और एक्सरे, इसकी क्या भूमिका होती है? क्योंकि जब भी कोई लंबे समय तक खांसता है, डॉक्टर अक्सर छाती का एक्सरे लिख देते हैं।
1: बिल्कुल सही, छाती का एक्सरे टीबी की पहचान में बहुत उपयोगी है। कई बार स्क्रीनिंग के दौरान एक्सरे में ऐसे बदलाव दिखाई देते हैं जो टीबी की ओर संकेत करते हैं, फिर डॉक्टर आगे की पुष्टि के लिए अन्य जांच करवाते हैं। यानी एक्सरे बीमारी की ओर इशारा करने वाला महत्वपूर्ण साधन है। अगर डॉक्टर को संदेह हो कि मरीज को दवा प्रतिरोधी टीबी हो सकती है, तब और अब भी विशेष जांच उसकी कराई जा सकती है, जैसे कल्चर और दवा संवेदनशीलता का टेस्ट। इसमें ये पता चलता है कि कौन सी दवा मरीज पर प्रभावशाली होगी और इलाज किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा।
0: तो साथियों, बिल्कुल बात साफ है, अनुमान नहीं जांच जरूरी है। खांसी हो तो घरेलू नुस्खों में महीनों न उलझें, बल्कि सही समय पर जांच करवाएं। 2 हफ्तों की खांसी हो जाए तो जांच बिना मत समय गवाएं। टीबी का इलाज है तैयार, समय पर जांच है सबसे बड़ा हथियार।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टीगन भाभी, एक और बात जानना चाहूंगा मैं आपसे, क्या सरकार सिर्फ उन लोगों की जांच करती है जो खुद अस्पताल पहुंचते हैं?
1: नहीं नहीं, आरजे बाबू, जब टीबी नियंत्रण का तरीका काफी आगे अब बढ़ चुका है देश में, पहले ज्यादातर मामलों में लोग खुद स्वास्थ्य केंद्र आते थे, लक्षण बताते थे, फिर जांच की जाती थी। इसे हम पैसिव केस फाइंडिंग कहते हैं, लेकिन आज केवल इसी पर निर्भर नहीं रहा जाता, अब एक्टिव केस फाइंडिंग पर भी बहुत जोर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य कर्मी खुद समुदाय तक पहुंचते हैं, गांव, बस्तियों, दूर दराज क्षेत्रों, जोखिम वाले समूहों में जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है, ताकि जो लोग किसी कारण से अस्पताल नहीं पहुंच पाते उनकी बीमारी भी समय रहते पकड़ी जा सकती है।
0: दोस्तों, बिल्कुल सही बात कर रही हैं हमारी टीकन देवी जी। यानी अब स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ लोगों के आने का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि खुद लोगों तक पहुँच रही है।
1: बिल्कुल, इस सोच के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत करोड़ों संवेदनशील और जोखिम वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, लाखों नए मरीजों की पहचान हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बीमारी जल्द पकड़ी जा सकती है और मरीजों को जल्दी इलाज मिल रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि टीबी मरीज की पहचान हो रही है, उनका इलाज किया जा रहा है और इलाज भी मुफ्त हो रहा है सरकारी अस्पतालों में। टीकन भाभी, मान लीजिए घर में किसी एक सदस्य को टीबी हो गई, तब परिवार को क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि इलाज तो मरीज करा रहा है, बाकी लोगों को क्या जरूरत है।
1: यहीं पर सबसे बड़ी गलती की जाती है। अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को भी टीबी है तो बाकी सदस्यों की भी जांच करवाना बेहद जरूरी है। इसे संपर्क या कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग कहा जाता है, क्योंकि जो लोग मरीज के साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, दिन भर एक ही घर में समय बिताते हैं, तो उसकी वजह से संपर्क में टीबी के जो जीवाणु हैं, उनकी संभावना उनके संपर्क में आने की अधिक हो जाती है। खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं, कमजोर प्रतिरोध क्षमता वाले लोगों की जांच बेहद जरूरी है। मैं तो हमेशा कहती हूँ, घर में एक व्यक्ति को टीबी तो पूरे परिवार की जांच जरूरी। यह एक छोटा सा कदम है जो बीमारी को फैलने से न सिर्फ रोकता है बल्कि कई लोगों की जान भी बचा सकता है।
0: लेकिन टीकन भाभी, मुझे लगता है कि टीबी की लड़ाई में सबसे बड़ी बाधा आज भी डर और शर्म है। कई लोग बीमारी छिपाते हैं, जांच नहीं कराते और दूसरों को भी नहीं बताते।
1: आपने बिल्कुल सही कहा, टीबी का जीवाणु जितना खतरनाक नहीं है, कई बार उससे ज्यादा खतरनाक उससे जुड़ा सामाजिक डर बन जाता है। लोग सोचते हैं अगर किसी को पता चल गया तो क्या कहेंगे, दूरी बनाकर लोग हमसे रिश्ता तोड़ देंगे, रिश्तों पर असर पड़ेगा। लेकिन सच यह है कि टीबी कोई शर्म की बात नहीं है, कोई पाप नहीं है, यह एक क्योरेबल डिजीज है जिसका इलाज उपलब्ध है और लाखों लोग हर साल पूरी तरह ठीक हो रहे हैं। इसलिए बीमारी छिपाने की बजाय उसका सामना करना ज्यादा समझदारी है। समय पर जांच ना कराने का नुकसान सिर्फ मरीजों को नहीं बल्कि पूरे परिवार समुदाय को हो सकता है।
0: समय पर जांच कराना बहुत जरूरी है और इस बीमारी का इलाज है। ऐसा नहीं कि इस बीमारी का इलाज ना हो या यूं कहें कि लाइलाज है, नहीं, इस बीमारी का इलाज संभव है। सरकारी अस्पतालों में टीबी की जांच निशुल्क है, उपचार भी निशुल्क है। अब मैं कहता हूं कि आपने जो बातें बताई बिल्कुल सही कहा आपने। तो साथियों, आज की पूरी चर्चा से हम क्या सीख लेकर जा रहे हैं?
1: मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोता 6 बात हमेशा याद रखें। पहली, अगर खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा है तो तुरंत जांच कराएं। दूसरी, टीबी हवा से फैलती है, हाथ मिलाने, साथ खाना खाने से नहीं। तीसरी, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में टीबी की जांच और इलाज मुफ्त उपलब्ध है। चौथी, अगर घर में किसी एक व्यक्ति को टीबी है तो परिवार के सभी सदस्यों की जांच कराना बेहद जरूरी है। पांचवी, टीबी मरीज से भेदभाव नहीं, सहयोग चाहिए, उसका मनोबल बढ़ा

0: क्योंकि इलाज में परिवार और समुदाय का साथ बहुत मायने रखता है।
1: बिल्कुल मायने रखता है, यानी कि हमेशा मरीज के आसपास रहें, उसका मनोबल टूटने ना दें, उसकी हिम्मत को ना हारने दें। उसकी हिम्मत आप है, यानी कि परिवार। तो इसलिए मरीज के आसपास रहें और उसको यकीन दिलाएं कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, बशर्ते कि इलाज समय पर करें। तो दोस्तों, इसमें एक छठी बात जोड़ना मैं चाहूंगा। शुरुआत में आपने सरला देवी की कहानी सुनाई थी दोस्तों, यानी कि टीकन देवी ने वो कहानी हमें सुनाई। उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? यही कि उन्होंने अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज किया। उन्होंने सोचा कि थकान उम्र की वजह से है, उन्होंने सोचा कि कमजोरी सामान्य बात है, उन्होंने सोचा कि खांसी अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई। इसलिए अगर आपका शरीर बार बार कई संकेत दे रहा है, कोई संकेत दे रहा है, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। समय पर जांच ही सबसे बड़ा बचाव है। तो आइए, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम सब मिलकर सेहत की शपथ लेते हैं। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ गई।
1: खांसी रहे दो हफ्ते से पार, जांच कराना है समझदार। टीबी हारेगी, हम जीतेंगे। इलाज पूरा करके ही हम सब रुकेंगे। राम राम, दुआ सलाम। इन्हीं बातों के साथ मैं ले रहा हूं अनुमति, यानी कि मैं गगन, और मेरे साथ जुड़ी रही टीकन देवी के रूप में खुशबू अख्तर। तो ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा? 120 शहर का एसटीडी कोड 4060205 नंबर, ईमेल आईडी 90.8fm@sharda.ac.in पर आप हमें मेल के माध्यम से अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आशा करता हूं कि आप इस जानकारी से बहुत सारा लाभ उठाएंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, दूसरों को भी सेहत के लिए जागरूक करेंगे, क्योंकि सेहत है तो लाभ गई। मुझे यानी गगन को दीजिए अनुमति, और खुशबू आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच सर।
1: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।
3: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
4: जी
3: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
4: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक स्वास्थ्य जन जागरूकता मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कही, ताकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो सब जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और आप सभी जानते हैं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बीमारियां भी होती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर RK शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, तो किस तरह से लोग अपना इस मौसम में ध्यान रखें?
1: इस मौसम में सबसे पहले ये कि धूप में काम कम से कम करें, सुबह शाम ज़्यादा करें, धूप में सिर पर कपड़ा रख कर चलें, पानी बोतल या साथ में इलेक्ट्रॉल ORS या जो भी चीज़ अवेलेबिलिटी हो, या घर से अपने एक छाछ, बेलपत्थर का जूस या जो भी जूस लेकर चल सकते हैं वो लेकर चलें साथ में, ताकि बीच में कहीं उसे पी सकें।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्मी हो या मौसम ख़राब हो, जो काम करने वाले हैं उनको तो अपना काम करना ही है, जाना ही है,
1: काम बहुत ज़रूरी है, काम बिना तो कुछ नहीं है।
0: तो काम पर जो लोग जाते हैं, खास करके जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए?
1: उनको यही सिर पर कपड़ा रखें हर समय
0: जी।
1: दूसरा ये कि कम से कम जो है मतलब ऐसे ही समझ लीजिए, देखें बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप है, 2 घंटे का टाइम, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस समय थोड़ा सा जो है कम काम करें या रेस्ट।
0: और
1: सुबह बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, शाम को देर तक काम कर सकते हैं, उस समय थोड़ा ठंड रहती है, दोपहरी में जो है सब ज़्यादा परेशानी आती है।
0: तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो काम है उसको, जो मौसम ठंडा ठंडा होता है थोड़ा, तो उसी में निपटा दें, और जो धूप होती है
1: उसमें आराम करें,
0: उसमें आराम
1: वहाँ भी जगह मिल जाए, अपना लेबर है तो अपना कहीं पेड़ है कुछ है या शेड है, कहीं भी किसी तरह का जगह है उनको वहाँ पर अपना।
0: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही कि धूप से गर्मी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अब ये जो मौसम होता है ना बीमारियां भी हो जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं इस मौसम में?
1: खास तौर से जो है आपको एक तो उल्टी दस्त आते हैं, दूसरा बाजार का खाना पीना कहीं खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली तो गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उससे लूज मोशन हो जाते हैं, तो बचाव करें। बाजार का खाना कम से कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है, और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो बहुत हल्का या कम खाएं।
0: तो जैसे आपने बताया कि दस्त की बीमारी हो जाती है, उल्टी की बीमारियां भी हो जाती हैं,
1: हीट स्ट्रोक हो जाता है, बुखार आ जाता है,
0: बुखार भी आ जाता है, अब बच्चों में जैसे डायरिया भी होता है, तो इसके क्या कुछ कारण हैं?
1: डायरिया का भी एक मेन कारण है धूप में, यदि घर में रहते तो नहीं होता इतना, लेकिन बाहर के आना जाना रखते हैं, औरतें हैं बच्चों को लेकर कहीं रिश्तेदारी में आना जाना कर रही हैं, और धूप में गर्मी में है तो उनको उल्टी दस्त के ज़्यादा चांसेस है।
0: तो जिन बच्चों को मान लीजिए डायरिया हो गया है, कभी ऐसा देखा जाता है उल्टी भी है और उसको
1: लूज मोशन भी है,
0: तो किस तरह से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है?
1: सबसे पहले तो उनको यही है कि थोड़ा सा उसको कोई उल्टी के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टी जब तक नहीं रुकेगी दस्त वाली दवा भी नहीं पचेगी, तो सबसे पहले उसको उल्टी कंट्रोल करने के लिए लिक्विड आता है उल्टी के रोकने के लिए, उसके बाद ORS का पानी पिलाइए उसको, ORS का लिक्विड भी आता है रेडीमेड बना हुआ, और ORS का जो पैकेट घोल के बना सकते हैं। तीसरा फिर उसको दस्त की दवा दें, कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है, इन्फेक्शन नहीं है पेट में ज़्यादा तो खाली जो है लूज मोशन के लिए कोई टैबलेट वगैरह या लिक्विड नहीं दे सकते।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज में कोई रहते हैं, मान लीजिए रात में ये दिक्कत हो गई, अब वो डॉक्टर साहब के पास जा नहीं सकते उस दौरान, तो उस दौरान वो क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं?
1: घरेलू उपाय हैं, नमक चीनी का घोल ले सकते हैं, ORS तो लगभग गाँव आजकल सब जगह मिल जाता है, क्योंकि आशा आंगनबाड़ी के सबके पास में ORS रहता है, तो ORS का पानी तो पिला ही दें कम से कम, यदि और दवा भी नहीं मिलती है कोई, और दवा मिल जाए आप, क्योंकि अब तो स्टोर भी काफ़ी लगभग हर गांव में एक आध कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वहाँ से उल्टी की दवा तो ले ही सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप ORS की सिफारिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या चीज़ है ये ORS?
1: ORS एक जीवन रक्षक घोल है
0: जी,
1: और खाली दस्त उल्टी के लिए नहीं है, ये किसी भी हीट स्ट्रोक में गर्मी के समय में, या आपको देख रहे हैं कि हमें थकान भी हो रही है कहीं पर, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी ORS का घोल जो होता है काम।
0: तो कहने का मतलब आपका यही हो गया कि अगर मान लीजिए कोई हमें बीमारी भी नहीं है गर्मी के मौसम वाली,
1: तब भी उसको ले सकते हैं,
0: तब भी हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है कि भाई हम अपने स्वस्थ रहें, तो किस तरह से उसकी दिनचर्या होनी चाहिए?
1: दिनचर्या तो यही कि सुबह जल्दी उठे
0: जी,
1: कुछ एक्सरसाइज व्यायाम अपना करें, काम भी करें लेकिन व्यायाम सबसे पहले है, ताकि इससे इसमें फुर्ती आ जाए। दूसरा, कम खाना और गम खाना, ये दोनों चीज़ साधन ऐसी है कि जिससे हमेशा स्वस्थ रहोगे, मन भी शांत रहेगा, और शरीर भी ठीक रहेगा।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, जो कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छा है प्रोग्राम आपका ये, और इस चीज़ को जागरूकता के लिए जगह जगह इसको सुनाया जाए, बताया जाए, जो भी अच्छे आपके जो है कहीं पे इस तरह की क्लिप मिलती है तो आपको जो बाहर उसको पब्लिक में सुनाया जाए।
0: आखिर में हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे?
1: गर्मी से बचें, थोड़ा सा जतन भी हो सकता है जितना हो सकता है, ये नहीं कि काम बंद कर दें, बाहर का बाजार का खाना कम से कम खाएं, बहुत ही मजबूरी में बाहर का खाना खाएं, घरेलू लिक्विड जो लें, मट्ठा हो, कोई मैंगो का जो आजकल जैसे पना बना लेते हैं वो ले लो, बेल पत्थर का जूस ले लो, ORS का पानी ले लो, ये घर से लेके चलें कुछ, और घर से एक बोतल पानी भी लेके चलें इसमें।
0: बिल्कुल डॉक्टर RK शर्मा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है रेडियो के माध्यम से, और हमारे जो सुनने वाले हैं समुदाय के लोग हैं ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे, और जो भी आपने बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
3: अधिक जानकारी के 1800-11666 पर संपर्क करें।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं रण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
4: एरी सुशीला, तेरो बालक ऐसो रो रहे हो है, भूखो है का?
5: हाँ, भूख ही लग रही होएगी।
4: तो याए शहद दे दे।
5: हाँ, तू 2 मिनट बैठ, में लेके आई।
6: भाई पागल वागल हो गई है का? तो उससे कितनी बेर बोली है कि 6 महीने को होने से पहले बालक है माँ के दूध के अलावा कुछ और न देना चाहिए। ये बालक की सेहत को घना नुकसानदायक है।
5: संगीता की भी तो बालक हुआ हो, वो तो शायद देख रही है अपने बालकन ने जब वाके दूध न उतर रहो।
6: डॉक्टर की बात तो तेरी बुद्धि में पता न क्यों घुसना रही है, वाने कही ना यू सब देने से बालक बीमार हो जावे। बे मतलब के काम करवा लो बस। बालक है स्तनपान करवाने से बालक की प्रतिरक्षा प्रणाली तगड़ी होवे, जासु बालक संक्रमण, एलर्जी और बाकी बीमारी से दूर रहवे। बालक में हड्डी वाली बीमारी होने का भी खतरा कम रहवे, और माँ बालक के संबंध में मिठास भी आवे। और स्तनपान न करवाने वाली महिलाओं में जल्दी गर्भाधारण करने की संभावना बनी रहे, खून की कमी और डिलीवरी के टाइम पे अधिक रक्तस्राव की भी संभावना बनी रहे, स्तन और अंडा से कैंसर का भी खतरा ज्यादा होवे। तो इसलिए अपने बालक है स्तनपान ही कराएं, और 6 महीने का होने से पहले बालक है सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं।
0: यूनिसेफ और सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से जनहित में जारी।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, भारत सरकार कई तरह की योजनाओं का संचालन करती है और इन योजनाओं के जरिए जरूरतमंद और गरीब वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया जाता है। वही समय समय पर कई पुरानी योजनाओं को और बेहतर बनाने के लिए इनमें बदलाव भी किए जाते हैं, जबकि कई योजनाओं को नए तौर पर शुरू किया जाता है। जैसे सितंबर 2023 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की थी। किसान मित्रों, इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को लाभ पहुंचाना है जो 18 पारंपरिक व्यापारों से जुड़े हैं। इस योजना के तहत न सिर्फ काम को एडवांस तौर पर सीखना बल्कि कई आर्थिक लाभ भी दिए जाते हैं, बशर्ते कोई भी इस योजना के लिए पात्र हो और इस योजना से जुड़ा हो। और अब किसान मित्रों बात करते हैं उन 18 पारंपरिक व्यापारों की जिनसे जुड़े लोग ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जैसे जो लोग दर्जी हैं, जो लोग जूता बनाने का काम करते हैं, जो लोग मूर्तिकार हैं, जो लोग नाई का काम करते हैं, जो लोग पत्थर तोड़ने वाले हैं, जो लोग ताला बनाने का काम करते हैं, जो लोग गुड़िया और खिलौना बनाते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, लोहार हैं, जो लोग मछली पकड़ने का जाल बनाते हैं, जो लोग हथौड़ा और टूल किट बनाते हैं, जो राजमिस्त्री हैं, जो लोग टोकरी चटाई झाड़ू बनाने का काम करते हैं, जो लोग माला बनाने का काम करते हैं, जो लोग कपड़े धोने का काम करते हैं और जो लोग पत्थर तराशने का काम करते हैं, तो ये सब इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ने के बाद लाभार्थियों को कुछ दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेनिंग लाभार्थियों को एडवांस तौर पर दी जाती है, जिसमें उनको अपने काम को और बेहतर करने का काम सिखाया जाता है। इसके लिए जब तक ये प्रशिक्षण दिया जाता है तब तक उनको रोजाना 500 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा लाभार्थियों को 15,000 रुपये टूल किट खरीदने के लिए भी दिए जाते हैं। अब बात आती है कि इस योजना का लाभ कैसे लिया जाए, तो कोई भी जो 18 पारंपरिक व्यापारों में से किसी भी काम से जुड़ा हुआ है तो वो अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र में जाकर के प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन कर सकता है और इस योजना का लाभ ले सकता है। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में, और आइए अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन की तरफ और आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं तरुण बाल्यान।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे तरुण बाल्यान से ये उपदेश। किसान मित्रों, आपकी सहायता के लिए प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। इन केंद्रों पर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा हमारे किसान भाइयों की हर एक समस्या का समाधान किया जाता है। हमारे किसान भाइयों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ज्ञान का केंद्र है। यदि हमारे किसान भाइयों को खेती करने में किसी भी तरह की समस्या आती है, जैसे फसल पर कीट लग जाते हैं, फसल पर रोग का प्रकोप है, फसल में खाद की मात्रा कितनी देनी चाहिए, नई फसल की जानकारी, कृषि यंत्रों के इस्तेमाल और जैविक खेती करने में कोई समस्या आ रही है, आपके क्षेत्र के अनुसार कौन कौन से उत्तम किस्म के बीज हैं। किसान मित्रों, कृषि विज्ञान केंद्रों पर कृषि से संबंधित बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जैसे किसान चौपाल, किसान मेला, एकीकृत कृषि प्रणाली, मिट्टी परीक्षण, कृषि में उपयोग होने वाली नवीनतम तकनीक, कृषि मशीनरी और उपकरण, सिंचाई प्रणाली और कृषि प्रदर्शनी की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा फसल में लगने वाले कीट और रोगों से संबंधित जानकारियों के साथ साथ किसानों के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। किसान भाइयों को इन कार्यक्रमों में आमदनी बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। इन सभी कार्यों की जानकारी कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दी जाती है। इसके अलावा समय समय पर किसान भाइयों को मुर्गी पालन, मछली पालन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, डेयरी फार्मिंग और जैविक खेती का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो इस तरह के प्रशिक्षण लेकर हमारे किसान भाई खेती के साथ साथ अतिरिक्त आमदनी भी कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना कृषि विज्ञान केंद्रों की उपयोगिता के बारे में। और आइए अब आपका करवाते हैं मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं एक रागनी। किस्सा रहेगा द्रौपदी चीरहरण का और गायक कलाकार हैं रविंदर खालौर।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रविंदर खालौर से ये रागनी, किस्सा था द्रौपदी चीरहरण का। किसान मित्रों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने इस योजना को जुलाई 2015 में शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में उन्होंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी है। इस योजना में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य देश में सभी युवा वर्ग को संगठित करके उनके कौशल को निखार कर उनकी योग्यता अनुसार रोजगार देना है। तो हमारे जो भी युवा साथी हैं और कुछ रोजगार हासिल करना चाहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं या पढ़ाई किसी वजह से छूट गई है, तो वो अपने नज़दीकी आसपास देखें, कोई कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र होगा वहां जाकर के संपर्क कीजिए और जिस काम में आपकी रुचि है उसके अनुसार आप कोर्स का चुनाव कर सकते हैं और उसमें प्रशिक्षण लेने के बाद आसानी से रोजगार हासिल कर सकते हैं और यही इस योजना का उद्देश्य है। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं योगेंद्र निमचाना से एक रागनी, किस्सा रहेगा रामायण का।

योगेंद्र निमचाना द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: ताज़ा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
2: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
1: क्या है राज?
2: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ। दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
3: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

मेहरबानो कालिया ने कहा, जब उसे दया दर्द आया, हरिया तने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, उस दुखिया से कंगाली में तू चीर लेके आ गया, करके बदले उसे माफ कर देता, वो तो तेरा बेटा था।

मेरे दिल में आहे भरती थी जब मेरी ब्याही मुझे हाथ पकड़ के डांटती थी, महाराज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी ब्याहता हूँ और यह कमर रोहतास तुम्हारा इकलौता पुत्र है, तुम्हें दर्द नहीं आया मेहरबानो? कहने लगा मैंने बज्जर की छाती करके अपनी ब्याही तहसील ले लिया, भला किसे अपने बेटे की मौत पर दुख नहीं होगा? मेहरबानो कहने लगा कालिया तुझे ऐसा नहीं करना था। मेहरबानो रोष में आके फिर कह दिया हरिया ने, अरे कालिया तेरा नाश जागा, मेरी बात सुन ले, तेरा अगर पेठा भर गया हो चीर लेने से भला कैसे,

0: क्या आपको पता है जन्म के एक घंटे के अंदर नवजात शिशु को माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध नवजात शिशु को बीमारियों से बचाता है।
1: जन्म के बाद नवजात बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। उसे शहद, पानी, घुट्टी या अन्य कोई पेय या खाद्य पदार्थ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से नवजात

0: शिशु बीमार हो सकता है।
1: स्तनपान कराते समय मास्क तथा सैनिटाइजर या साबुन और पानी से हाथ की धुलाई जैसी कोविड उपयुक्त व्यवहारों का पालन करना मत भूलिएगा।
0: संक्रमित माता भी अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती हैं।
1: स्तनपान संबंधी अधिक जानकारी आप आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या नर्स दीदी से प्राप्त कर सकते हैं।
0: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएगी खुशियां बेमिसाल।
1: शिशु की सही देखभाल से फर्क
0: पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8 FM महिलाओं का सम्मान करता है, उनके हक की बात करता है, और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक विशेष श्रृंखला के तौर पर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसमें हमें सहयोग मिला है स्मार्ट संस्था का, और जिन विषयों पर समय दर समय हम बात कर रहे हैं वो विषय हैं जैसे कि मेरी पत्नी, मेरा अधिकार, दहेज प्रथा या हत्या, कैसे बचे मनचलों से, कच्ची उम्र की शिक्षा, माँ मुझे बाहर जाना है, पितृसत्ता, असमान व्यवहार, असमान दीक्षा, खतना धर्म नहीं दर्द, बालिका या वधु, और बेटियां हैं तो वंश है यानी प्रजनन अधिकार। तो इस तरीके से हर एक मुद्दे पर हम खुलकर बातें कर रहे हैं, और हम आपको बताना चाहेंगे इस विशेष कार्यक्रम में हमें दूसरे सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी सहयोग मिल रहा है, और ये भी सच है कि दूसरे स्टेशन हमारे खास प्रोग्राम को अपने यहां से ऑन एयर करते हैं। इसी समझौते के तहत हम दूसरे स्टेशन के कार्यक्रम आज यहां से ऑन एयर कर रहे हैं, जिसमें हमें सहयोग मिल रहा है लाउड स्पीकर 90 FM का। आइए सुनते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और सुनते हैं हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम।
6: हिंसा को नो

0: नमस्कार। आज के हमारे कार्यक्रम हिंसा को नो में आप सबका स्वागत है और ये कार्यक्रम हम स्मार्ट की सहायता से प्रस्तुत कर रहे हैं। हिंसा एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ही एक डर सा लगता है। जरूरी नहीं कि हिंसा मारपीट या शारीरिक प्रताड़ना ही हो। कई बारी हमारे साथ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम हिंसा के रूप में नहीं मानते, उसे अपने जीवन का, समाज का एक हिस्सा, एक रीति मानते हैं। कुछ ऐसी ही सामाजिक कुरीतियों के बारे में हम आप सबके साथ एक नाटक साझा कर रहे हैं। ये कहानी है मंजू की। मंजू के घर में उसका पति सुरेश, लड़का गोलू और सास प्रभा है। मंजू एक गृहिणी है। वो अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत ही बढ़िया ढंग से करती है। मंजू का पति सुरेश पास की कंपनी में नौकरी करता है। मंजू का लड़का मोहल्ले के ही स्कूल में पढ़ता है। एक रात खाने के टेबल पे,
1: अरे आज खाने में क्या बना है?
2: रोटी सब्जी बनी है।
1: यार तुमको जब पता है कि माँ रोटी नहीं खा पाएंगी तो क्यों रोटी बनाई हो?
2: रोटियाँ एकदम पतली पतली बनाई हैं और गरम गरम रोटियाँ नरम होती है, माँ जी आराम से खा लेंगी। अगर नहीं खा पाएंगी तो मैं चावल बना दूंगी।
1: बना दूंगी, बनाई क्यों नहीं?
2: चावल बहुत कम था, सुबह के लिए भी नहीं था, तो थोड़ा सा ही चावल था, इसीलिए मैंने सोचा कि रोटियाँ ही बना दूं पतली पतली, माता जी दूध के साथ खा लेंगी।
1: तुम माँ के लिए रोटियाँ बनाई ही क्यों?
2: क्या करती, कुछ और था ही नहीं।
1: तो तुम दिन में रोटियाँ खा लेती, माँ के लिए चावल बना देती।
2: गलती हो गई। अभी के लिए ना मैं एक काम करती हूँ, वो रोटियाँ भिगो देती हूँ दूध में, मम्मी आराम से खा लेंगी।
1: माँ तो खाएंगी पर तुम इस समय खाना नहीं खाओगी, ये तुम्हारी सजा है।
2: जी ठीक है।
1: देखो बेशरम को अभी भी शर्म नहीं आ रही, कैसे कह रही जी ठीक है? दिन भर जो मन करता है करती है, कोई काम नहीं है, बस एक खाना बनाना है वो भी ढंग से नहीं कर पाती है।
2: अब से नहीं करूंगी।
1: अभी पिछले हफ्ते ही बोला था कि नहीं करूंगी। तुम औरत नहीं हो, कुत्ते की दुम हो, कितना भी कहो समझ नहीं आता है, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है तुम्हारा।
2: चावल नहीं था तो क्या करती?
1: अच्छा तुम मुझे मेरी कमियां बताओगी? एक बात बताओ, इतनी हिम्मत लाती कहाँ से हो?
2: आपकी कमियां नहीं बता रही हूँ मैं तो बस ये कह रही हूँ कि चावल नहीं था तो रोटियां बनानी पड़ी।
1: अभी भी औरत चुप नहीं हो रही है।
2: जी माफ करिएगा। अच्छा मैं जो चावल है वही बना देती हूँ माँ जी के लिए।
1: ठीक है।
0: मंजू सुरेश के लिए भोजन परोसती है। सुरेश एक निवाला खाता है और थाली पटक के एकदम गुस्से से उठ जाता है।
1: सब्जी में इतना नमक डाल के मुझे मारना चाहती है क्या?
2: जी गलती से पड़ गया होगा।
1: सारी गलतियां कर लेती है और भोला सा चेहरा बना के कहती है गलती से हो गया। मुझे उन मर्दों में न समझना जो औरत के त्रिया चरित्र को नहीं समझते, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, समझी?
0: सुरेश मंजू के गालों पे एक थप्पड़ मारता है।
2: आपको तो बस मुझे ही मारना पीटना आता है हर बात पे।
1: बेशर्म औरत, एक तो गलती भी कर रही है और जुबान भी लड़ा रही है।
2: देखिए आप मुझे मारा पीटा ना करिए, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो आप हर बात पे मेरे पे हाथ उठा देते हैं।
1: फिर बोली चुप नहीं रहोगी?
0: बात को बढ़ता देख सुरेश की माँ प्रभा आती है और मंजू से कहती है,
3: अरे वो नहीं समझ रहा तो तुम समझदार बनो, रात का समय है, आवाज कहाँ तक जा रही होगी, मोहल्ले वाले सुनेंगे तो कितनी बदनामी होगी।
2: माँ जी आप देख रही हैं कैसे ये मुझे मार रहे हैं।
3: हाँ मैं सब देख रही हूँ, तुम भी कोई कम नहीं हो, इतना तेज से लड़ रही हो, बात कहाँ तक जा रही होगी, लाज हया तो है नहीं कि लोग सुनेंगे तो बदनामी होगी। अरे मर्द दो थप्पड़ मार ही दिया तो क्या हो गया?
2: माँ जी ये कलर रोज ही होता है, कब तक सहूं मैं ये?
3: चुप रहो, एक शब्द अब मत बोलना।
0: मंजू चुपचाप खाना खाकर बिस्तर पे सोने चली जाती है। रात में भी मंजू ठीक से सो नहीं पाती, वो सोचती रहती है और फिर अपने मन को दिलासा देती है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही थोड़े ही हो रहा है, इतना तो हर औरत को सहना पड़ता है। इस तरह मंजू जैसी महिलाएं खुद पे हो रही हिंसा को समाज के डर की वजह से स्वीकार करती चली जाती हैं।

0: हिंसा के डर की इस कड़ी में हमारी अगली कहानी है रिया की। रिया 21 वर्षीय नवयुवती है। वो स्कूल की पढ़ाई खत्म कर अब उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश कर चुकी है। रिया की सहेलियों के साथ साथ उसके कुछ दोस्त लड़के भी हैं जो उसी विश्वविद्यालय में प्रवेश कर चुके हैं। रिया का एक करीबी दोस्त है रोहित। रिया रोहित से बहुत प्रेम करती है। रोहित भी रिया से प्रेम करने का दिखावा करता है। रोहित का रिया के साथ साथ और भी कई लड़कियों से प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। एक दिन कॉलेज में,
1: रोहित रोहित।
2: हाँ बोलो।
1: मैंने सुना है तुम आजकल सुरभि से बहुत बात कर रहे हो।
2: हाँ कर रहा हूँ बात, तो क्या दिक्कत है?
1: रोहित मैं तुमसे प्यार करती हूँ यार, तुम इस तरह से किसी और लड़की से बात करोगे तो मुझे दिक्कत नहीं होगी?
2: अरे प्यार मोहब्बत का क्या है, वो तो सबसे हो जाता है। मैं भी ये थोड़े कह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता।
1: अगर तुम मेरे से प्यार करते तो इस तरह से सुरभि के पीछे नहीं पड़े रहते।
2: अरे यार पीछे आगे क्या पड़ना।

0: मैं तुमको भी तो मानता हूँ ना यार।
1: रोहित, ये मुझे नहीं पसंद कि तुम मेरे साथ साथ बाकी लड़कियों को भी डेट करो।
0: देखो बेबी, पसंद तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ना ही तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही बाकी लड़कियों को।
1: तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी।
0: ऐसे कैसे नहीं रहोगी, तुम क्या तुम्हारे बाप भी रहेंगे, समझी?
1: बहुत बदतमीज हो यार तुम तो, बात करने की तमीज बिल्कुल ही भूल गए हो। अब तो मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती।
0: ठीक है, मत रहना, पर ये देखती तो जाओ।
1: क्या है?
0: अरे खुद देख लो क्या है।
2: रोहित रिया को अपने फोन में रिया की आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाता है और ये फोटोज और वीडियोस वायरल करने की धमकी देता है। रिया टूट सी जाती है और रोहित के साथ बिना कुछ बोले रहने के लिए तैयार हो जाती है। रिया जैसी आजकल की यूथ इस तरह की हिंसा का शिकार हर रोज हो रही है और समाज के, घर वालों के और चार लोगों के डर की वजह से वो इस हिंसा को स्वीकार भी कर ले रही है। परंतु हमारा ये कहना है कि आप इस तरह की किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं, ताकि आपके साथ साथ बाकी की महिलाएं भी ऐसी हिंसा का शिकार ना होने पाएं। आशा करते हैं कि आप सबको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी और उसने आपको कुछ शिक्षा भी दी होगी और आपने समझा भी होगा कि किसी भी समस्या का समाधान मारपीट सहने से नहीं, बल्कि परिस्थिति का हिम्मत से सामना करने में है। तो उम्मीद है आप भी इस कहानी के द्वारा दिए गए संदेश को अपने अंदर चरितार्थ करेंगे और आप भी कहेंगे हिंसा को नो।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला लाउड स्पीकर 90 FM का। ये विशेष कार्यक्रम हिंसा को नो के अंतर्गत आप सुन रहे हैं और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम आप समय दर समय यहाँ से सुनते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120406025 पर, और इसी नंबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं कि ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा। एक बार पुनः लाउड स्पीकर 90 FM का हम धन्यवाद करते हुए आपसे मैं अब अनुमति लेना चाहता हूँ। बस सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले, तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं, जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है,

0: डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। अब सरकार द्वारा सभी RNTCP नोटिफाइड टीबी मरीजों को आर्थिक रूप से सहायता उपलब्ध है। इलाज के समाप्ति तक हर मरीज को प्रति महीने 500 रूपए उपलब्ध किए जाएंगे। इससे मरीजों की नोटिफिकेशन, इलाज अनुपालन, सही पोषण और इलाज के अंतर्गत होने वाले खर्चों में सहायता मिलेगी। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरो साधन 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार
3: और आप सबको अजीत का भी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत उमंग कार्यक्रम में आप सबका। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी जी और कलावती सोनी जी ने।
3: आप लिखते हैं, आपके काम पर टीका टिप्पणी करने वाला इंसान ही असल में आपका अच्छा सलाहकार होता है
2: जी,
3: क्योंकि वो आपकी कमियां दूर करने में अहम भूमिका निभाता है
2: जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे सुविचार के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और सही उत्तर देने वाले श्रोताओं के नाम इस प्रकार से हैं।
3: रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा। आपने लिखा है,
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हम परिवार के सभी सदस्य आपके ज्ञान और मनोरंजन से भरे कार्यक्रम का भरपूर आनंद लेते हैं। हमारे घर पर दो नन्हे मुन्ने बच्चे ऋषभ और कनक भी आपके उमंग कार्यक्रम को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सच में बहुत आपके आभारी हैं। आइए सुनते हैं अगला संदेश जो हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी

0: हिसार हरियाणा से, और लिखने वाले हैं रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर और ओजस गुर्जर। आप सबने मिलकर लिखा है हमें। कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ताओं को सादर नमस्कार। मत बांटो इंसान को कविता सुनकर देशभक्ति की भावना जागृत हुई और हमारे ज्ञान में इजाफा हुआ।
1: और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए। आइए अब सुनते हैं ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी।
0: ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में आज हम जानेंगे महान लेखिका और सामाजिक कार्यकर्त्री हेलेन केलर के बारे में। उनका पूरा नाम था हेलेन एडम्स केलर।
1: उनका जन्म 27 जून 1880 को अमेरिका के अलाबामा में हुआ। जन्म के समय हेलेन केलर एकदम स्वस्थ थीं। जन्म के 19 महीनों के बाद वे किसी अज्ञात वायरल का शिकार हो गईं और उस बीमारी से उनकी दृष्टि, वाणी और सुनने की शक्ति जाती रही।
0: श्रोताओ, हेलेन केलर सामान्य बच्चों से भिन्न थी। हेलेन केलर के माता पिता के सामने एक चुनौती आ खड़ी हुई और वो चुनौती ये थी कि ऐसा कौन शिक्षक होगा जो उन्हें सच में शिक्षा दे सके। उन्हें आखिरकार एक शिक्षिका मिल गई जिनका नाम था मिस एनी सुलेवन।
1: उन्होंने हेलेन केलर को हर तरीके से शिक्षा दी, जिसमें उन्होंने स्पर्श वर्णमाला यानी मैनुअल अल्फाबेट, और हेलेन केलर ने राइट हमसन स्कूल फॉर डेफ से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की।
0: श्रोताओ, इसके आगे स्नातक की पढ़ाई करने के लिए हेलेन केलर ने रेडक्लिफ कॉलेज में दाखिला लिया। हेलेन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में आती तो थी, लेकिन वह इतनी प्रतिभाशाली थी कि वह सामान्य बच्चों के साथ आसानी से पढ़ने लगी।
1: जी, यहाँ पढ़ते पढ़ते हेलेन केलर को लिखने का शौक हुआ और उन्होंने लिखना शुरू किया। हेलेन केलर ने अपने संघर्ष के इसी दौर में एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसने उन्हें बहुत प्रसिद्धि और उपलब्धि दिलाई। इस पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। श्रोताओ, ये पुस्तक अब तक दुनिया की 50 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है और लाखों करोड़ों विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए बड़ी प्रेरणा का कारण है।
0: श्रोताओ, अपने जीवन में संघर्षों के ऐसे दौर को पार करके हेलेन केलर ने समझ लिया था कि जीवन में यदि संघर्ष किया जाए तो कोई ऐसा काम नहीं है जिसे हम ना कर सकते हो। उन्होंने पूरे विश्व का दौरा किया और सन 1959 में भारत भी आई।
1: श्रोताओ, हेलेन केलर ने अपने महान विचारों और जिंदगी के अनुभवों से ब्रेल लिपि में करीब 9 किताबें लिखीं। वे सामान्य स्नातक थीं, लेकिन उनके लिखने की अद्भुत क्षमता के कारण उन्हें मानद डॉक्टरेट और मानद आचार्य की उपाधि प्रदान की गई।
0: श्रोताओ, हेलेन केलर ने अपने जीवन की मार्गदर्शिका एवं टीचर यानी एनी सलीवन की मदद से कई महान लेखक जैसे कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, अरस्तु, रविन्द्रनाथ टैगोर, नीत्शे और महात्मा गांधी आदि के साहित्य को पढ़ा, उनकी गहराइयों को समझा और कई किताबों का ब्रेल लिपि में अनुवाद भी किया।
1: जी।
0: दुनिया के दिव्यांगों और स्त्रियों के लिए वे एक बहुत बड़ी प्रेरणा हैं।
1: सन 1968 को दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। उनके दो कथन बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके अनुसार, दुनिया की सबसे खूबसूरत और सुंदर चीजें न कभी देखी जा सकती हैं और न ही छुई जा सकती हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ दिल से महसूस की जा सकती हैं।
0: और श्रोता, उनका दूसरा कथन है, हम वह सब कुछ कर सकते हैं जिसे करने की हम इच्छा रखते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त सिर्फ ये है कि जो करें उसमें तन्मयता से लगे रहें।
1: जी हाँ साथियों, ये थी हेलेन केलर के बारे में रोचक जानकारी।
0: उन पर हमने रेडियो कार्यक्रम भी बनाया है, लेकिन ये जानकारियाँ अतिरिक्त हैं। श्रोताओं, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: हेलेन केलर की किस पुस्तक का अनुवाद दुनिया की 50 से भी अधिक भाषाओं में हो चुका है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं।
0: हेलेन केलर की किस पुस्तक का अनुवाद दुनिया की 50 से भी अधिक भाषाओं में हो चुका है?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर,
0: और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। इस पर आप अपना संदेश और उत्तर जरूर भेजें।
1: जी, तो अब चलते हैं उमंग प्रसारण के कार्यक्रमों की कड़ी में। श्रोताओं, कहते हैं कि एक चित्र में 1000 वाक्य होते हैं। आज हम सुनेंगे एक ऐसे महान भारतीय चित्रकार के बारे में जिसने भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया। हम कह सकते हैं कि उनके बिना भारतीय चित्रकला लगभग अधूरी है।
0: और श्रोताओं, वे महान चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। आइए सुनते हैं उनके जीवन वृत्त पर आधारित कार्यक्रम
1: राजा रवि वर्मा।
2: अरे अरे, तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवारी गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
3: लगभग 150 साल पुरानी बात है, उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
4: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
5: मंगला।
6: हाँ?
5: देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
6: ठीक है।
5: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना?
6: हाँ हाँ।
5: उठाकर मुझे दे।
6: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
5: हाँ।
6: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
3: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
5: ये हाँ ऐसे, ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
6: अरे वाह।
5: और ये इसकी पूंछ।
6: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
5: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
6: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
5: ओ, बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
6: ठीक है।
5: अब बना।
4: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
6: भाई
5: हा?
6: अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
5: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
6: ठीक है।
5: चल चल चल चल, चल।
6: हाँ,
5: हम
6: हाँ,
5: दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
3: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
7: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया कोच्चू ने। देखो तो सही, पूछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
4: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
7: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
8: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था। आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोच्चू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, तन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई, विद्वान नीलकांतन भट्टा तिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई। नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें।

0: ये हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है और अब ये हमारे संरक्षण में है। रवि
1: जी,
0: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
1: जी। रवि वर्मा यही करने लगे तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेंसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
0: मिस्टर जेंसन,
2: यस,
0: जब आप चित्र बना रहे हो तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
2: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा, मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
0: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
3: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेंसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
2: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
3: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सकें। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में 2 हाथी तक दिए।
1: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
3: पौराणिक कथानकों वाले चित्रों व देवी देवताओं के चित्रों का महलों से लेकर झोपड़ियों तक में आदर सत्कार हुआ। वो इसलिए कि उन्होंने इन चित्रों को प्रेस लगाकर छापा। ये चित्र छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आकार में छपे और कम मूल्य पर खूब बिककर घर घर में पहुंचे। सन 1906 में अपनी आयु के 58 वर्ष तक वो कला की साधना में बराबर लगे रहे। उन्होंने भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में जो कार्य किया उसने उन्हें अमर बना दिया है। वो सचमुच चित्रकारों में राजा थे। भारतीय चित्रकारों में अकेले एकमात्र राजा।

0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम राजा रवि वर्मा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: श्रोताओ, क्या आप जानते हैं कि प्रचलित साहित्य में सबसे अधिक चालाक किस जानवर को माना जाता है?
0: कुछ मैं बताऊं विमलेश जी? मुझे तो लगता है कि लोमड़ी को ही प्रचलित साहित्य में सबसे अधिक चालाक माना जाता है।
1: बिल्कुल सही। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
0: चालाक लोमड़ी,
1: और जानते हैं कि किस प्रकार की चालाकी उसने दिखाई।

प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? उसने नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना। क्यों भला? क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई। बच्चों, हमें हमेशा झूठी प्रशंसा करने से और झूठी प्रशंसा सुनने से बचना चाहिए।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चालाक लोमड़ी और आपने ये भी जाना कि किस प्रकार की चालाकी चालाक लोमड़ी ने दिखाई।
2: बिल्कुल। और अब समय को देखते हुए आप सभी श्रोताओं से हम आज के लिए आज्ञा चाहते हैं। कल फिर इसी समय
1: नए उमंग के साथ आप सबसे मुलाकात होगी उमंग में। तब तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अब ही चल।
1: तो अब ही चलो।
3: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुण शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिएं। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में, तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम,
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: इंसान को अपनी उम्र का एहसास तब होता है जब जिंदगी में उसकी बहुत सी पहलुएं धीरे धीरे बंद होती जाती हैं या ख़त्म होती जाती हैं, और पंचम मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा ही पहलू है। पंचम के साथ क्या रिश्ता था मैं नहीं जानती, या मैं उसे कोई नाम नहीं देना चाहती। पंचम के साथ मैंने बहुत फिल्मों में काम किया।

हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM। सुनो शारदा।

0: लेकिन दोस्त अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें

और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें। यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नहाने के लिए शावर की जगह हमेशा बाल्टी का उपयोग करें। अगर शावर उपयोग भी कर रहे हैं तो छोटे वाले शावर लगवाएं, जिससे पानी की कम खपत हो। शावर का उपयोग न करके हम 40 से 45 लीटर पानी हर एक मिनट में बचा सकते हैं। फ्लश में भी बहुत अधिक पानी उपयोग होता है, इसलिए ऐसा फ्लश लगवाएं जिसमें पानी का फोर्स कम हो। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: राम राम दो सलाम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम के माध्यम से जिसका नाम है कम्युनिटी कनेक्ट राबता। इसके अंतर्गत हम लोगों से राबता करते हैं, एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही खास विषय है। जी हाँ, हम घरेलू हिंसा के बारे में बात करेंगे। हम उस सब्जेक्ट को आज छुएंगे जिसके बारे में लोग बात करते भी हैं, नहीं भी करते, और बात करनी चाहिए। महिलाओं को अपने हक हुकूक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके राइट्स क्या हैं। शिक्षा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर दिक्कतें परेशानियाँ हैं तो हम कहाँ जाएँ, किसी लॉयर से मिलें, और लॉ यानी कि कानून की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं वो आप सुने तो निश्चित तौर पर इसका लाभ आपको मिलेगा। यूजीसी हमसे क्या कह रहा है इसी के बारे में हम बात करेंगे। इसकी जो प्रासंगिकता है, जो कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, कह सकते हैं कि सोने पर सुहागा। हम बात करेंगे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के बारे में। इसी संबंध में बात करने के लिए मेरे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर आप जुड़ रही हैं, जो कि हमेशा सुनो शारदा के लिए अपना बहुमूल्य समय निकालती रही हैं। आप हैं स्कूल ऑफ लॉ शारदा यूनिवर्सिटी फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक कोऑर्डिनेटर, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट प्रोफेसर आप हैं डॉक्टर रितु गौतम मैम। मैम सुनो शारदा 90.8 FM पर एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।
1: कैसे हैं मैम आप?
2: आई एम गुड, हाउ आर यू?
1: आई एम फाइन, और मैं ईश्वर से कुशल क्षेम के साथ साथ एक दूसरे के लिए कामना करता हूँ कि हम दोनों स्वस्थ रहें, जहाँ भी खुश रहे। और हमने बड़ी खूबसूरत लाइनें सीखी हैं अपने हिंदुस्तान से कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो
2: हमारा जो लॉ है, जो लीगल सिस्टम है, वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स टू ऑल दी सिटीजन्स। ह्यूमन राइट वो बेसिक राइट हैं जो हर एक ह्यूमन बीइंग को मिलने चाहिए एंड विच इज़ गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आज जो हम टॉपिक जिस टॉपिक के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है, जो है डोमेस्टिक वायलेंस, जो जस्ट कॉन्ट्ररी है टू दी विच इज वी कैन से एज द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो ये घरेलू हिंसा जो मुझे लगता है आज के समाज में हर घर में कहीं ना कहीं हर परिवार में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। कुछ लोग शेयर करते हैं, कुछ लोग नहीं शेयर करते हैं, बट मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपसे साझा करना चाहूँगी। जो केसेस हम डेली बेसिस पे जो हमारे पास आते हैं, जो हम जिनसे डील करते हैं, सो दैट ऐसे लोग जो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उन्हें एक थोड़ी प्रेरणा मिल सके, उन्हें उत्साह मिल सके, उन्हें हम गाइड कर सके कि एक्चुअली उन्हें करना क्या है।
1: संक्षेप में मैडम ने आपको बता दिया कि किस सब्जेक्ट पर, किस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। अपने हक हुकूक की बातें होंगी और इशारा ये कि अपने अधिकारों को जाने। हम बात करेंगे अपने घर के माहौल के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, उस परिवेश में जहां आप उठते बैठते हैं दिक्कतें परेशानियां हो जाती हैं, उन परेशानियों से हम कैसे बचा कर रखें अपने आप को, उस हिंसा को हम नो कहें। हम बात करेंगे घरेलू हिंसा के बारे में, और एक्सपर्ट के तौर पर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रितु गौतम मैम। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुर शारदा 90.8 FM विद मी मेरियानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सोनू शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और आज के दिन हम बात कर रहे हैं एक खास विषय पर, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के विषय में। और जाहिर सी बात है कि एक विषय बहुत संवेदनशील है, एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। तो इसी संबंध में हमारे साथ हैं डॉक्टर रितु गौतम। आप स्कूल ऑफ लॉ शारदा यूनिवर्सिटी से आते हैं और जब मैं प्रोफाइल को पढ़ रहा था तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक कोऑर्डिनेटर रन करते हैं। तो मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: ये जो इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ आप चल रहे हैं तो आपको खुद को ही तनाव हो जाता होगा कभी कभी तो।
1: नहीं सर, मुझे लगता है कि इससे मुझे खुद पर्सनली भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। जब इतना तरह के डिस्प्यूट, नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें देखते हैं तो कहीं ना कहीं फील हमें पता लगता है, यू नो, हर एक चीज़ हमें सिखाती है दो चीज़ें, डूज एंड डोंट्स, क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। तो समवेयर हम ये भी सीखते हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या नहीं करना है, अपनी फैमिली को कैसे सेव करना है, और एक जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं फील करते हैं कि अगर हम खुद ही नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरों को क्या सीख देंगे।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए। जिम्मेदारियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और जब हम जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं तभी किसी विषय पर हम बात कर पाते हैं। आज का जो विषय है वो है घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। इसके बारे में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बातें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं और इतना क्लेश हो जाता है कि कभी कभी तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो घरेलू हिंसा को आप हमारे लिसनर्स को कैसे समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं?
1: राइट, जब हम कहते हैं घरेलू हिंसा तो जनरली प्रिज्यूम किया जाता है फिजिकल वायलेंस, वेयर एज फिजिकल वायलेंस इज जस्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर, वो सिर्फ एक पहलू है। तो वायलेंस कई तरह का होता है। इट कैन बी फिजिकल वायलेंस, इट कैन बी इमोशनल वायलेंस, इट कैन बी वर्बल एब्यूज, इट कैन बी फाइनेंशियल एब्यूज, इट कैन बी सेक्सुअल एब्यूज, और nowadays in this digital era digital abuse is also very prominent. So social isolation is also kind of a violence, right? तो वॉयलेंस के डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट प्रकार हैं, और सिर्फ फिजिकल वॉयलेंस ही वॉयलेंस नहीं होता। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया डिजिटल वॉयलेंस का, जो कि एक न्यू फॉर्म ऑफ वॉयलेंस है। बिकॉज देखिए, हम सब एक सिटीजन होने के साथ एक नेटिजन भी हैं। हम सभी की एक डिजिटल लाइफ है सेपरेट, जहाँ पे आप आपके फेसबुक अकाउंट, आप इंस्टा अकाउंट, वहाँ पे एक आप डिफरेंट पर्सन है, आपकी एक अपना, यू नो, आप अगर कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, और यू नो, तो आपका एक डिफरेंट आइडेंटिटी, डिफरेंट एक वर्ल्ड है वो, वी कैन से दैट। तो वो आपके लिए बहुत मैटर करता है। आज के टाइम पे हार्डली कोई ऐसा पर्सन है जिसे जो सोशल मीडिया से जुड़ा ना हो। तो ये इस तरह के केसेस भी अब हमारे पास काफ़ी आने लगे हैं, जहाँ पे हस्बैंड को या वाइफ को इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि ये इस तरह
0: रही है।
1: अक्सर इस तरह पे प्रॉब्लम होती है कि ये वीडियो बनाती है, वीडियो में ये इस तरह का कंटेंट डालती है, या ये इस तरह के गाने हैं हमारे घर में नहीं चलते, ये उस तरह की थोड़ा ये वल्गर है, या लेट्स से कि ये चैटिंग करती है, या इसने किसी को DM किया या बात की। तो लड़के और लड़की दोनों ही तरफ से, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, एक फिजिकल अपनी लाइफ में हम शायद कुछ और हैं और सोशल मीडिया पे
0: कुछ और,
1: कुछ और मल्टीपल अकाउंट्स के साथ। तो एक ये भी आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि ये भी एक टाइप की हिंसा ही है, और इससे जुड़े हुए मामले भी आजकल काफी देखने को मिलते हैं।
0: लिसनर्स, मैडम ने एक तरफ इशारा कर दिया है कि रील के चक्कर में आप ना पड़े, अगर कुछ आप अच्छा कर रहे हैं जो कि समाज के हित में है तो मुझे लगता है कि कहीं कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रील बना रहे हैं, घर की जिम्मेदारियों से हम दूर हैं, भाग रहे हैं, तो डिस्प्यूट्स हो ही जाते हैं, क्लेश हो ही जाती है। समस्या है तो समाधान है, इस समस्या से हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें, क्या वो कारण हैं, कौन कौन से वो एक्ट हैं जो कि एक महिला के लिए है, पुरुष के लिए है, इसके बारे में हम जरूर जानेंगे। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिक और ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुर शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। मेरे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ी हुई हैं, आप हैं डॉक्टर रितु गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक कोऑर्डिनेटर, स्कूल ऑफ लॉ शारदा यूनिवर्सिटी से आप आते हैं। और जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, आज के दिन हमने विषय चुना है घरेलू हिंसा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो कौन कौन से रीजंस हैं मैम जिसके बारे में ये समस्या हमारे सामने आती है, घरेलू हिंसा के जो कारण हैं उसको हम डिटेल में आपसे समझना चाहते हैं।
1: देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अभी तक हमने अप्रोक्सीमेटली 1500 मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किए हैं अपने सेंटर में, जो कि हम पिछले 6 साल से रन कर रहे हैं। यहाँ पे कारण भी डिफर करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। मीन्स ये जो एरिया है, स्पेशली ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात करें, तो यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी मिक्स पॉपुलेशन है। यहाँ हाईली एजुकेटेड एमएनसी में काम करने वाले लोग भी हैं, जहाँ दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग हैं, और यहाँ एकदम ग्रामीण बैकग्राउंड से आने वाले लोग जो कि आसपास के लोकल एरिया से हैं वो लोग भी हैं, जहाँ जनरली औरतें घर में ही रहती हैं, हाउस वाइफ ही होती हैं। और यहाँ एक और मैंने कल्चर देखा है कि जहाँ पे लड़कों की बहुत यंग एज में शादी हो जाती है, तो दोनों ही काफ़ी यंग होते हैं, और वहाँ लड़का भी काम नहीं कर रहा है और शायद लड़की भी नहीं कर रही है, और एक फैमिली पे डिपेंडेंसी है। तो दोनों ही सिचुएशन बहुत अलग सिचुएशन है, और हर सिचुएशन में कारण बहुत अलग अलग होते हैं। हर केस एक डिफरेंट केस है, हम ये कंपेयर नहीं कर सकते। बट मैं कुछ कॉमन रीजंस हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसमें से सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है आज के समय पे है वो है डाउरी। दहेज उत्पीड़न, जो कि हम टिपिकली समझते हैं कि भाई ये फीमेल ही एक केस फाइल कर सकती है मेल के अगेंस्ट में, आपको मैं बताना चाहूँगी डाउरी और जनरली केसेस जो फाइल किए जाते हैं उसमें सबसे पहला एलिगेशन डाउरी का ही होता है।
0: जी जी, कि इन्होंने भी होता है तो वकील साहब खुद ज्ञान दे देते हैं। हाँ, कि दहेज प्रथा का आप एक आरोप लगा दीजिए।
1: राइट, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि डाउरी लेना ही नहीं, डाउरी देना भी क्राइम है, और जिसमें 5 साल की सजा हो सकती है। तो यहाँ पे और ऐसे केसेस हैं जहाँ लव मैरिज आप कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो, पार्टनर अपनी मर्जी से चूज कर रहे हो, लेकिन फिर भी पेरेंट्स से डाउरी ले रहे हो, और लड़के वाले ले रहे हैं वो एक अलग चीज है, बच्चे खुद कहते हैं अपने पेरेंट्स को कि हमारे लिए ये करिए। तो वहां पे डाउरी इज बेसिकली अग्रीड। अब वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होके चलती आई है। जैसे आज के टाइम में किसी को भी हाउसवाइफ्स नहीं चाहिए, सबको वर्किंग वुमेन चाहिए। तो पहला क्वेश्चन जो पहले होता था कि घर के काम कर लेते हो, या ये जो उस तरह से देखा जाता था बैकग्राउंड, आज के टाइम में जॉब, जॉब प्रोफाइल, इनकम स्टेटस, वो चीजें देखी जाती हैं। तो ये है बेसिकली ग्रीड, जो डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म होती रहती है। और यंगर जनरेशन को, इफ दे वॉन्ट टू सेव देयर मैरिजेस, इफ दे वॉन्ट टू सेव दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, उन्हें ये सबसे बड़ा विकार है मेरी नज़र में, जो एक लालच पैदा करता है दोनों ही पार्टीज में। देने वाला सोचता है जब मैंने दिया है तो मैं हक क्यों नहीं जमाऊंगा, और लेने वाला सोचता है कि भाई मैंने जो खर्चा किया है वो तो मैं वापस लूंगा ही। एक कीमत आप लगा रहे हो अपने ही बच्चे की, किस हद तक सही है ये, और जो कीमत दे रहा है फिर वो उस चीज पे हक जमाएगा। तो यहाँ ये एक सबसे बड़ा रीजन मेरी नजर में है। तो अगर हम इसे अगर साइड कर देते हैं, इस ग्रीड को अगर हम साइड कर देते हैं जो कि डाउरी के रूप में हमारी सोसाइटी में है, तो मुझे लगता है वहां वो एक फर्स्ट स्टेप होगा एक प्योर इंटेंशन के साथ मैरिज को स्टार्ट करने का। सेकेंड रीजन मैं बताना चाहूंगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये बहुत बड़ा रीजन है आज के टाइम में, और हर दूसरे तीसरे केस में हमें ये चीज देखने को मिलती है। उसके पीछे कई रीजंस हैं, उसके पीछे अगर सपोज मैरिज, और ऐसा नहीं है इररेस्पेक्टिव ऑफ अरेंज और लव मैरिज, ये दोनों ही प्रकार के मैरिजेस में काफी कॉमन रीजन हम लोग देखते हैं। रीजन क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, एक्सपोजर, लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी बिटवीन गर्ल एंड बॉयज आज के टाइम में, जहाँ पे अगर अब अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो वो भी एक तरह से जुआ है। यू नेवर नो कि पर्सन क्या है, कैसा है, कितना ही आप देख लेंगे। स्पेशली जहाँ पे जो ग्रेटर नोएडा वाली लोकेलिटी है, जहाँ बहुत यंग जनरेशन में यू नो आप 18 20 22 साल के लड़के की आपने शादी कर दी, अब वो शादी के बाद ऑलरेडी जो हमारे ही यहाँ पे बच्चे हैं जिनके ऑलरेडी छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अब वो यहाँ पे आ रहे हैं, उन्हें एक्सपोजर मिल रहा है, उनको देखने का नजरिया चेंज हो रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है
0: जी।
1: उसी तरह से दूसरी तरफ अगर हम देखें जहाँ मैच्योर कपल है एकदम और अपनी मर्जी से जो जिनका यू नो स्टैंडर्ड डिफरेंट है, उनकी उनके लिए लाइफ के मायने अलग हैं, लाइफ को जीने का तरीका अलग है, तो मुझे ऐसा लगता है लॉयल्टी लाइफ में और मैरिज में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि प्यार नहीं होगा फिर भी चल जाएगा, रेस्पेक्ट अगर नहीं है तो मैरिज नहीं चल सकती। तो ये सबसे बड़ा एक मुझे लगता है एक वार करती है सेल्फ रेस्पेक्ट के पर्सन की। और उसके बाद यू नो आप किसी को डिमीन कर रहे हो, और व्हेन यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स अदर पर्सन, आप किसी तीसरे पर्सन की तरफ इंक्लाइंड हो राइट, तो वहाँ आप ऑब्वियसली जब एक पर्सन से आप फेथफुल नहीं हो तो वो उस चीज़ को भांप जाएगा, उसको समझ में आएगा। और ये जो चीज़ है फिर धीमे धीमे डिसलाइकिंग में, वो डिसलाइकिंग कहीं ना कहीं हेटरेट में, वो हेटरेट कहीं ना कहीं एक बहुत गंदा रूप ले लेती है।
0: आप तो, कह सकते हैं उस बात को खुल के कह सकते हैं कि कभी कभी हमने ये देखा है कि एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं और एक ताना बाना बुनने की कोशिश करते हैं, वो खुद ना सामने आके पीछे से वार करने की भी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से मैम इशारा कर रही है इस बात को आप जानिए समझिए कि एक नाजुक संबंध है, वो डोर है, वो है प्यार की। अगर प्यार नहीं रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा, तो ये दिक्कतें परेशानी आती चली जाती हैं। अगर पुराने समय को हम देखें तो निश्चित तौर पर दिक्कतें परेशानियां पहले भी थीं, लेकिन आपस में सलाह मशवरा करके बड़े बुजुर्गों को बीच में लेकर उस समस्या का समाधान ढूंढा जाता था। आप क्षण भर ये भी सोचें कि घर बिगड़ जाता है, देसी भाषा में मैम जिसे कहते हैं कि बच्चे बिखर जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, छोटी सी जॉब्स होती हैं हमारी, छोटी सी दुनिया होती है, वो जब बिखरती है तो दिल बहुत दुखता है। ये कुछ ऐसे तमाम कारण हैं जिसके बारे में मैडम ने यहाँ रोशनी डाली है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और बातें करेंगे, बात करेंगे अधिनियम कुछ एक्ट्स के बारे में, पुरुष के एक्ट क्या हैं, लॉ क्या कहता है, महिला के लिए लॉ क्या कहता है, इसके बारे में जानेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 एफएम विद मी मेरियानी गगन के साथ। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, विषय है, सब्जेक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि कभी घर में किसी के बर्तन न खटकें, क्योंकि दिल दुखता है, समय खराब होता है, माहौल खराब होता है, और खुद के घर में भी अगर दिक्कतें परेशानी है तो कहीं ना कहीं हम दूसरे पड़ोसी की नींद भी उड़ा रहे हैं, उसको भी परेशानी में डाल रहे हैं। अगर पड़ोसी ऐसा रहा है तो निश्चित तौर पर हम भी परेशान हो रहे हैं, है ना। चलिए डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर रितु गौतम इस पर क्या रोशनी डालेंगी। मेरे साथ आप फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि स्कूल ऑफ लॉ शारदा यूनिवर्सिटी से आप आती हैं। तो मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर। मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी, ऐसे पेरेंट्स जिनके बीच जो सेपरेट हो रहे हैं, और सेपरेशन भी आफ्टर यू नो बहुत हिंसा, वॉयलेंस और लड़ाई झगड़ा, और जिस तरह का यू नो एक बहुत ख़राब सिचुएशन है, और उस सिचुएशन को जो बच्चे देख रहे हैं और देखने के बाद उसमें वो बड़े हो रहे हैं, उसको देखते हुए उनकी मेंटेलिटी पे भी ये कहीं ना कहीं एक बहुत ख़राब इम्पैक्ट डालता है, और कहीं ना कहीं उनका विश्वास टूट जाता है शादी से, शादी के बंधन से, प्यार से, इन चीज़ों से। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कहीं ना कहीं एक आप इससे तारुफ रखेंगे इस बात से भी कि हमने जो अपने पेरेंट्स को देखा है, उनका उनकी जो जिस तरह से उन्होंने निभाया है, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी है, और आज की डेट में जो हम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों के ऊपर भी आएगा। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों जनरेशन के टूवर्ड्स है, बट कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के इस मझधार में लोग फंसे हुए हैं, जहाँ एक तरफ एक सेल्फ है, यानी कि वो क्या चाहते हैं, उनका एक लाइकिंग डिसलाइकिंग है, और दूसरी तरफ उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सभी जगह पे राइट्स एंड ड्यूटीज कम्स टुगेदर। हम सिर्फ अधिकारों के बारे में बात करेंगे और दायित्वों का निर्वाह नहीं करेंगे तो भी बैलेंस नहीं हो सकता। जैसे कि आज के टाइम में हम देखेंगे कि शादी करके लड़कियाँ बिल्कुल लड़की हैं या लड़के हैं, लड़कियों इसलिए बोल रही हूं मैं क्योंकि लड़की जा रही है दूसरे घर में। तो जहां पे आप शादी करके गए हो, आपको पता है कि इसने ये नहीं दिया, ये स्त्रीधन है, ये मेरा राइट है, ये चीजें हैं, लेकिन आप पहले अपनी ड्यूटीज भी तो समझिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी लायबिलिटी क्या है। और ऐसा बोला गया है कि आप अगर पहले फोकस आपका लायबिलिटीज पे रहेगा तो आपके जो भी राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हम बैलेंस नहीं कर पाते अपने राइट्स एंड ड्यूटीज के बीच में, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लीगल पॉइंट्स पे अगर बात करें तो लॉ ने हमारे पास काफ़ी सारी लॉज हैं जिन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन दिया हुआ है फीमेल्स के लिए भी और मेल्स के लिए भी। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, जनरली जब मेल्स आते हैं तो उन्हें लगता है कि यू नो सारा लॉज तो फीमेल सेंट्रिक है, मैम आप इन्हीं की सुनाएंगे, बट ऐसा नहीं है। एज अ मीडिएटर ये मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एक न्यूट्रल अप्रोच रखूँ, क्योंकि अगर मेरा अप्रोच न्यूट्रल नहीं होगा और उनमें से कोई भी एक पक्ष ये फील करेगा कि हम बायस हैं, तो वो कभी हम उनका मैटर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो हो सकता है यहाँ ओके करके चले जाएं, बाद में फिर से फाइट करें। जो हमारा सक्सेस रेट है अभी तक का वो 90% का सक्सेस रेट है 1500 केसेस में, तो जो कि एक बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम इक्वल वेटेज देते हैं दोनों पार्टीज को, और इनको एक प्योर इंटेंशंस के साथ, उनको एक यू नो विदाउट एनी ग्रीड, विदाउट एनी बेनिफिट, हम उन्हें प्योरली गाइड करते हैं कि आपके लीगल राइट्स क्या हैं, प्रोविज़न क्या हैं, उन्हें सुनते भी हैं, समझाते भी हैं, उनको साइकोलॉजिकली भी उनका जो भी यू नो उनको रिक्वायरमेंट होती है उसको सुनने की, समझने की और ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो लॉ है, हमारा कानून है, किसी के लिए भी बायस नहीं है। यहाँ एक स्पेशल लॉ बनाया गया, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो कि महिलाओं के लिए है, वुमेन के लिए है, बट ऐसा नहीं है कि मेल मेंबर्स के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है। मेल मेंबर्स के लिए भी प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वी शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वीकर सेक्शन, और महिलाओं को वीक ऐसा नहीं है, महिला वीक है, बट द थिंग इज जिस तरह से हमारा सोसाइटी है, कल्चर है, और जिस तरह से प्रथाएं हैं जहाँ पे, जैसे कि फीमेल्स ही जाती है मेल के घर, मेल फीमेल के घर नहीं आता है, तो जहाँ यहाँ पे जो वनरेबिलिटी है फीमेल की थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, दैट इज़ द रीज़न एक प्रोटेक्टिव लॉ बनाया गया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन. अब ये जो हमारा लॉ बना है ये फीमेल को प्रोटेक्ट करता है, ये क्रिमिनल लॉ नहीं है. ऐसा नहीं है अब डोमेस्टिक वायलेंस डीवी में आपने केस डाला तो वहाँ से आप सीधा यू नो पुलिस थाने ले जाया जाएगा या उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा, बल्कि यहाँ इसका उद्देश्य है कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, कोई भी फैमिली डिस्पोजेस ना करे, तो उनके जो रेजिडेंशियल राइट्स हैं उनको मेंटेन किया जा सके, और महिला को अगर मेंटेनेंस वगैरह नहीं मिल रही है तो वो दिलवाई जा सके. और एक और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के को लेके कि ये सिर्फ वाइफ्स के लिए है. जो एक्ट है दैट इज़ फॉर वुमेन, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, और जिसमें वुमेन ऑफ ऑल कैटेगरीज आर covered. Not only wives, legally wedded wife, in fact जो live in partners हैं उसमें भी जो female partners हैं उनके लिए भी ये act available है और remedy provide करता है. और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि male के against में ही डाला जा सकता है, in fact female के against में भी complaint file कर सकती है. यानी कि अगर mother in law या सिस्टर इन लॉ या कोई भी अगर और फीमेल मेंबर किसी भी तरह से घर में फिजिकली मेंटली इमोशनली किसी तरह से अब्यूज कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में भी डाला जा सकता है. बेसिक पर्पस इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का है कि फीमेल को सेफ्टी प्रोवाइड कराई जा सके, इसका पर्पस सेपरेट करना नहीं है. अदर देन दैट ऑल्सो हमारे पास काफी प्रोविजन है, जैसे कि जो हमारा करेंट BNS है भारतीय न्याय संहिता, उसके अंदर सेक्शन 85 है क्रुएलिटी को जो गवर्न करता है, और जो दोनों के लिए अवेलेबल है, मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर फाइल कर सकते हैं केस, बट ये क्रिमिनल लॉ है. उसके अलावा डाउरी रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए सेक्शन 86-89 ऑफ BNS वो डाउरी रिलेटेड ऑफेंसेस को गवर्न करता है, जिसमें डिमांड ऑफ डाउरी, हरेसमेंट फॉर डाउरी, डाउरी डेथ, ये सारे प्रोविजंस को कवर करते हैं. उसके अलावा मैट्रिमोनियल अगर ऑफेंसेस की, डिस्प्यूट्स की अगर हम बात करें तो सेक्शन 115 है जो असॉल्ट को गवर्न करता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ स्त्री धन सेक्शन 316 वो उसे गवर्न करता है, और बहुत सारे जेंडर न्यूट्रल, यानी कि जो हमारा BNS है वो जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि मेल और फीमेल कोई भी उसके अंदर केस दायर कर सकते हैं. और एक ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जो कि फीमेल्स के प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली है. थर्ड जो हमारा इम्पॉर्टेंट लॉ है टू डील विद दिस मैट्रिमोनियल मैटर्स, दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट और अदर मुस्लिम मैरिज एक्ट एंड अदर लॉज. तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी मेल एंड फीमेल एनी वन ऑफ द स्पाउस कैन फाइल अ केस, तो वो भी उसके अंदर में रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं.
0: वेरी गुड, बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में आपने हमारी जो लिसनर हैं, जो श्रोता हैं, उनको बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है. और मुझे लगता है कि लिसनर्स आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्ट क्या है और वो एक्ट किसके लिए है, क्या मेरे लिए है या नहीं है, और ये एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत हम कंप्लेन किसी के खिलाफ दर्ज करा सकते हैं, जैसे कि बात हुई सासू माँ के खिलाफ, ननद के खिलाफ, अगर वो अत्याचार या परेशान करें. ये ध्यान देने वाली बात है, ये नहीं कि सिर्फ आप कंप्लेन कर दें, क्योंकि अक्सर हमने ये भी,
1: और ऐसा नहीं है सिर्फ महिलाएं, पुरुष भी करवा सकते हैं. ये सिर्फ एक एक्ट है जो स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए बना है, वो भी मैंने आपको बताया बिकॉज ऑफ द वल्नरेबिलिटी, राइट, और जैसा हमारा सोशल कस्टम है. अदरवाइज मेल्स के पास भी इक्वल राइट है. जो क्रुएलिटी है वो फीमेल, आपको मैं बताना चाहूंगी जो हमारे लीडिंग केसेस हैं, जैसे दास्ता वर्सेस दास्ता, नवीन कोहली वर्सेस नीतू कोहली, ये बहुत लीडिंग केसेस आर रिलेटेड टू क्रुएलिटी. ये केस मेल्स ने फीमेल्स के अगेंस्ट में डाले हैं. तो मतलब ऐसा नहीं है कि लॉ बायस है या सिर्फ फीमेल्स के लिए है, इक्वली मेल्स के राइट्स भी प्रोटेक्टेड
0: काम
1: है।
0: करता है, कानून पक्षपात नहीं करता, इसका भाव यही है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि प्यार जिंदगी का एक सार है, प्यार के साथ अगर हम रहेंगे, दिक्कतें परेशानियां किस घर में नहीं है, कहाँ नहीं है, हर जगह है। घर में टेंशन, ऑफिस में जाओ तो ऑफिस में बॉस की टेंशन, लेकिन समाधान खुद ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज हम अवसाद से ग्रसित हो जाएंगे, दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, बीमार हम कहलाए जाएंगे, हमारे चेहरे की जो रौनक है वो दूर हो जाएगी। जिंदगी चलने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है, हम तो यही कहेंगे समस्या का समाधान ढूंढिए। वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और ब्रेक यानी कि बहुत जरूरी है। ऐसी अगर आप छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं कि यार वो नाराज हो रही है बेगम साहब, तो आप चुप हो जाइए। जो जिंदगी का सार बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब वो कहते हैं तो मैं चुप हो जाती हूँ, मुझे लगता है कि ये समस्या का समाधान बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक ब्रेक, उसके बाद मैं आपको मिलूंगा ही। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और आज हम जिस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा के बारे में और इसके जो रीजंस हैं उसके बारे में जाना, एक्ट क्या है, एक्ट किसके लिए है इसके बारे में जाना और एक्ट का दुरुपयोग ना हो ये आप उसकी मर्यादा को जरूर जानिएगा समझिएगा। कुछ केसेस के बारे में मैम आपने हमें बताया। लिसनर्स मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, मेरे साथ एक्सपर्ट के तौर पर आप जुड़ी हुई हैं डॉक्टर रितु गौतम, जो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक कोऑर्डिनेटर स्कूल ऑफ लॉ शारदा यूनिवर्सिटी से आप आती हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली केस हमने देखा है, जो सुना है, स्मृति मंदाना वाला, पलाश मुचल वाला, जो वैवाहिक संबंध विच्छेद हो गया। क्या लगता है इस विषय पर आप, ये जो केस स्टडीज है, बीइंग अ लॉयर आप किस तरीके से उस केस को पढ़ती हैं, समझती हैं, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए मैं अपना पर्सनल व्यू इस पे शेयर करना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है इट इज ऑलवेज बेटर देन यू नो टू लेट, क्योंकि हम लोग क्या कई बार देखा गया है कि शादी होने से पहले भी हमें काफ़ी अलार्म्स मिलते हैं, हमें लगता है कि नहीं चीज़ें ठीक नहीं है, ये जो हो रहा है वो सिचुएशन ठीक नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर कि हमने कार्ड बांट दिए हैं, हमने वेन्यू बुक कर दिया है, हमने ये कर दिया है, उसकी वजह से हम मजबूरन और ना चाहते हुए भी उसमें जुड़ जाते हैं। एक इसी तरह का केस हमारे पास आया था। इस केस में मतलब जैसे उस फीमेल ने पूरा अपना डिटेल्स सारी डिटेल्स बताई, तो जिस टाइम पे लड़की को मेहंदी लगी हुई है और हल्दी लगी हुई है और घर से निकलना मना है, अब ये इस लड़की के परिवार में क्या था कि इस लड़की की ही जॉब सबसे अच्छी थी, फादर वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग एज सच, भाई छोटा था, माँ डिपेंडेंट थी, इस लड़की की ही जॉब सबसे अच्छी थी। तो देखिए एक लड़की शादी कर रही है और अपनी शादी के लिए दहेज भी खुद दे रही है, और दहेज में भी जो भी उनका अमाउंट तय हुआ था उसमें से कुछ 10-12 जो भी जा चुके थे और कुछ पर्टिकुलर अमाउंट बचा हुआ था जो देना था, तो इन्होंने बोला कि मैं कल शादी से पहले कल दे देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। उन्होंने बोला नहीं, उन्हें लगा कि भाई शादी हो गई एक बार तो पता नहीं मिले या ना मिले, उन्होंने कहा नहीं अभी दीजिए। और ये मेहंदी लगे हुए, हल्दी लगे हुए इस कंडीशन में एटीएम तक गई है और कैश विड्रॉ करके लाई और इसने कैश दिया है। आप ये सोचिए, उस टाइम पे भी कई बार ये फील हुआ कि ये सही नहीं है, ये इतना जो लोग लालच कर सकते हैं, जो इस तरह से अगर डिमांड रख सकते हैं
0: अभी शादी से पहले,
1: ठीक पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा जी? और हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लड़की या लड़के, जो जिन्हें सिग्नल सारे होते हैं, जिन्हें लगता है कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, उसके बाद भी क्योंकि हम सोसाइटी के प्रेशर में, हमारे माँ बाप का पैसा खर्च हो गया है, हमने वेन्यू बुक कर दिया है और हम अपना सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर चुके हैं, इसलिए उसको लेट गो कर देते हैं। ये जो आपने केस पूछा, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हर कि उन्होंने इतना बड़ा कॉल लिया, और बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं नहीं ले पाते, और मजबूरन जानते बूझते कि उस तरह का कोई रिलेशन उसका मिल गया या कहीं और इन्वॉल्व है और शादी कर ली फिर भी, और दूसरे ही दिन से या फिर थोड़े टाइम में उनको कॉन्सिक्वेंसेस दिखने लग जाते हैं। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है आज की जो जनरेशन है, जो यंगर जनरेशन है, वो हम सबसे थोड़ी ज़्यादा समझदार है और अवेयर है, एंड आई थिंक एवरीबडी शुड लिसन टू देम सेल्फ कि अगर उन्हें कहीं भी कोई डाउट लग रहा है, कोई भी चीज खराब लग रही है, कोई भी चीज कहीं,
0: हिम्मत दिखानी पड़ेगी,
1: पड़ेगी लेना पड़ेगा। तो मुझे, मैं उसकी हिम्मत की दाद देना चाहती हूँ और आई रियली अप्रिशिएट हर स्टेप कि एटलीस्ट उन्होंने डिस्पाइट इतना सब कुछ शेयर हो गया है उसके बाद भी एक्शन लिया।
0: वेरी गुड मैम, आपने एक मैसेज दे दिया है सोसाइटी को, लिसनर्स को या आम जन को, अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है अपने मन से बात करिए, अपनी फैमिली से बात करिए, और जब आप बड़ों की सलाह लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक सलाह जो मिलती है वो बहुत ज़रूरी है, और यहाँ ज़रूरी ये है कि अच्छे एडवाइज़र जिसको कहते हैं कि अच्छे सलाहकार होना बहुत ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं बातें सद जाती हैं। और जिस तरीके से मैम ने कहा कि पहले डिसीजन ले लिया, पहले स्टेप ले लिया, पहले कॉल ले लिया और वो शादी टूट गई वक्त रहते हुए, अदरवाइज बाद में जब पता चलता कि दिक्कतें परेशानियां बहुत ज्यादा हैं तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती थी। तो
1: ये जो एडवाइजर्स हैं मुझे, क्योंकि देखिए हर एक इंसान
0: जी
1: जो किसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, हम अपनी जो चाहे हमारी खुशी है या दुख है, हम किसी ना किसी के साथ शेयर करते हैं। हमारा एडवाइजर कौन है, हम किसके साथ शेयर कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है.
0: मैटर करता है, राइट.
1: आप किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर कर रहे हैं जो खुद बहुत नेगेटिव है, बिटर एक्सपीरियंस से आया है, वो आपको नेगेटिव एडवाइस ही देगा.
0: राइट.
1: तो आप अपना जो पार्टनर है, जो भी पर्सन है, जो मेंटोर है, जो एडवाइजर है, उसको बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करिए. अदरवाइज किसी थर्ड न्यूट्रल पर्सन से बात करिए, क्योंकि जो पहले आपने बोला रोल प्ले करते थे पेरेंट्स, आज के टाइम में वो पेरेंट्स का रोल भी काफी बायस्ड है. रीजन बीइंग, जो पहले हमारे 3-4-5 बच्चे होते थे, जॉइंट फैमिली होती थी, तो चाचा नहीं तो ताया, ताया नहीं तो दादा, कोई ना कोई एक समझदार व्यक्ति होता था. बट आज के समय में क्या है, एक ही बच्चा है, वहां पे आप बायस्ड हैं अपने बच्चे की टूवर्ड्स पूरा, आपको उसकी कोई बुराइयां ही नहीं दिख रही हैं, तो आप उसको कभी समझा ही नहीं पाएंगे और ना आप दूसरे व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाएंगे. तो इसके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप उस समझदार व्यक्ति की तलाश करें अपने आसपास जो आपको सही सलाह दे सके और सिर्फ आपको नेगेटिविटी ना दे. क्योंकि लोग, अब हर इंसान अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर करता है, और वो इंसान जो सिर्फ बिटर एक्सपीरियंस से होके आया है, वो आपको कभी पॉजिटिव एडवाइस नहीं देगा, वो बिटर ही देगा.
0: तो कहने का मतलब सिर्फ यही कि सलाहकार कौन है, एडवाइजर कौन है, कहीं वो आपके जज्बातों के साथ खेल तो नहीं रहा, आपकी भावनाओं का मजाक तो नहीं उड़ा रहा. उसी व्यक्ति के साथ मन की बात साझा कीजिएगा जो आपकी बात को सुने, समझे और एक अच्छी एडवाइस आपको दे. वक्त का इशारा हो चुका है, मुझे अनुमति लेनी होगी. वक्त कभी किसी के लिए नहीं ठहरता, इसलिए वक्त पर सारे काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सब अच्छा होगा, बेहतर होगा. मैम, आपने वक्त निकाल कर मुझे वक्त दिया, हमारे श्रोताओं को समय दिया, दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ.
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे बुलाने के लिए.
0: सो लिसनर्स, बस इस प्रोग्राम को जरूर सुने, समझे. आशा करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा. अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो 01204060205 पर आप हमें कॉल करेंगे. आपका कोई सवाल होगा तो हम मैम तक पहुंचाएंगे, मैम के जरिए हम आप तक वो बातें पहुंचा ही देंगे. वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9:11, और बस जाते जाते हमेशा की तरह ही कहना चाहता हूं कि ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत. जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ. मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार.

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और

इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयाँ लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स, उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है, गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखे, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह, जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना। विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े। और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहां से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियां सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
7: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं। तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार, उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें?

0: उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ओले ओले ओले, हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए Sharda School of Media, Film and Entertainment. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Film making एक creative field है और यदि आप creative सोचते हैं तो ये field आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: तुम्हारा टैंक चल रहा है।

0: सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि पाकिस्तानी फौज के लिए भी एक मिसाल है सर।
1: अगला परमवीर चक्र हमारे रेजिमेंट में मैं लेकर आऊंगा।
2: चलती है सांसें जिसकी, हर शख्स वो जिंदा है, जिसके जीने का मकसद हो वही तो बंदा है।
1: सर लड़ाई होने वाली है।

0: हम फौजी हैं, जस्ट फॉलो अस।
1: अरे तो उसे भी मिला था अब जाने के लिए कमबख्त माना नहीं, लड़ता रहा।
2: एक भी देख, एक इंच पीछे नहीं हटेगा। सामने से
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए Sharda School of Media, Film and Entertainment. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म टेलीविजन OTT प्रोडक्शन एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग एडिटिंग प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल।

0: मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: आने वाली, वो बेवफा, छलावा थी।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: तुम कर क्या रही हो तारा?
2: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
1: ओह,

0: मच्छरों पे कैसे करना है वार, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आई एम सॉरी नमी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
1: इट्स ओवर, अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती।

0: तड़पता है दिल।
1: What is this shit? मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
2: So what? मैं काम में बिजी था यार, तुम मुझसे मिलना चाहती थी, मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो।
1: You know, Shail, it really hurts.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है, इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
7: इन समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जब तू इस घर में खुशियाँ बनकर आई।
1: तुम रहो स्वस्थ और सुरक्षित, हमको यही बात की चिंता सताई।
2: अरे कौन है वो जो हमको समझाए, कैसे करें हम इनकी देखभाल।
0: अरे चिंता ना करो अम्मा, मुन्नी अस्पताल में हुई है, इसलिए 7 बार हम इस घर के चक्कर लगाएंगे, नहीं रहेगी कोई कसर अधूरी। मुन्नी की जांच मैं करूंगी पूरी, जांचूंगी वजन और तापमान, रखूंगी आंख नाक और त्वचा का भी ध्यान। कितनी बार कब और कैसे अपना दूध तुम पिलाओगी ये मैं तुम्हें बतलाऊंगी। मुन्नी को छूने से पहले हर बार कैसे धोना है हाथ ये भी सबको सिखलाऊंगी। छोटी सी है मुन्नी, इसे तुम 7 दिन तक बिल्कुल मत नहलाना, सीने से लगा के रखना और कपड़े खूब पहनाना। 15 है खतरों के लक्षण, रखना तुम इन सबका ध्यान। देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना, तुरंत मुन्नी को SNCU ले जाना।
3: करती है पते की बात, ये तो सुघर सयानी है, बच्चे के होने पर ये तुम्हारे घर आनी है।
0: 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42वें दिन मैं बच्चे की जांच करने आऊंगी, क्योंकि बच्चे की नियमित जांच से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: और डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
1: आए पापा। क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो?
0: वो
1: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
2: क्या हो बेटिया?
3: डॉक्टर साहब
4: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपकी ही देन है।
5: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
1: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
3: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा, प्रॉमिस।
4: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
6: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।
7: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर की बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से हमारे श्रोताओं के मन में सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की, और कोशिश रहेगी कि इन सवालों के जवाब भी हम दें। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो परिवार जनों के मन में डर और सवाल रहते ही रहते हैं। खासकर सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बातों से लोग उलझन में हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं, और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? अब जान लेते हैं इस सवाल का जवाब। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा

0: काफी कम किया जा सकता है। दूसरा सवाल, क्या HPV टीका सुरक्षित है? तो जानते हैं इसका जवाब। जी हाँ, बिल्कुल, HPV टीका सुरक्षित माना जाता है। ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं। ये सामान्य बातें हैं और आम तौर पर जल्दी ठीक हो जाती हैं। तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? तो इस सवाल का जवाब है, गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, इसलिए अफवाहों पर भरोसा ना करें। अगर कोई चिंता हो तो आशा बहन जी, ANM बहन जी और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CHO या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से बात करें। अब आता है सवाल नंबर 4, ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? तो इसका जवाब है, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को बीमारी आने से पहले सुरक्षा देने के लिए ये टीका लगाया जाता है। सवाल नंबर 5, क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? जवाब है, बिल्कुल नहीं, HPV टीका मां बनने की क्षमता पर असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है, बांझपन या कमजोरी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। सवाल नंबर 6, क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही हैं? तो इसका जवाब है, हर बात सही नहीं होती, कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही लें। अब बारी आती है सवाल नंबर 7 की, जो कि आखिरी सवाल है, टीका कब और कहां लगेगा? तो इसका जवाब है, इसके लिए अपनी आशा बहन जी, ANM बहन जी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें, वो ही आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुक कर